ऐसा होता है कोई काम जब आप बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बार कर लेते हैं, मतलब एक्सट्रीम बार कर लेते हैं, तो आपके लिए तो वो हो जाता है नॉर्मल। लेकिन वो लोग जो उसे करना चाहते थे उनके लिए वो हो जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि ओ माय गॉड क्या काम कर रहे हो तुम। हाँ, सो रेडियो मसी 24/7 लाइफ पर मैं आरजे नूपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेंगी कि हमारे लिए एक्टिंग लाइन, एक्ट्रेस लाइन, ये इंडस्ट्री बहुत ही ग्लैम वर्ल्ड है। लेकिन प्रीति जिंटा जो इसको घोट के पी चुकी हैं, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी नेचुरल है, नॉर्मल है। एक्चुअली प्रीति जिंटा जो है ना, वो अपनी ही मूवीज नहीं देखती हैं, अपने ही पोस्टर्स नहीं देखती हैं, अपने ही गाने नहीं देखती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे खुद को खुद से देखना ना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए वो अपने आप को देखती ही नहीं है। ओ हो, तो भाई ये सब इनकी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो खुद को स्क्रीन में परफॉर्म होते हुए नहीं देख पाते, लेकिन खुद परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर लेते हैं। हाँ, आज इन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. Nacho, nacho, nacho, nacho, nacho. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
2: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
3: रहो। You know what? एक मूवी में गाना आया था, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय। तो मुझे नहीं लगता कि अक्षय नाम के लड़के या अक्षय नाम के एक्टर्स जो है ना वो सीधे या साधे होते हैं। मतलब एक्टिंग इंडस्ट्री में जो जो लोग हैं ना और एक्चुअली में एक्टिंग कर रहे हैं और वो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं ना, आप उन्हें सीधा साधा तो समझिएगा ही नहीं, बिकॉज सीधे साधे लोगों की इंडस्ट्री में जगह ही नहीं है। सो मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली अक्षय कुमार के जो को स्टार्स रहे हैं वो उनकी बहुत सारी तारीफ कर रहे थे कि अक्षय बहुत अच्छे हैं, अक्षय बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अक्षय सेट्स पर बहुत डिसेंसी से रहते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं और अपने संग लंच करवाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होता है ना पार्ट, या आपको अच्छा ट्रीट करना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है, आप इस तरह से फैमिलियर हो जाओ कि हर कोई जब इंटरव्यू में आपकी बातें करे ना तो वो अच्छी खासी सीधी साधी टाइप करे, राइट? तो आप इन बातों में मत आ जाना, जज मत कर लेना किसी को, एकदम अच्छा अच्छा। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।
0: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। आप पूरी दुनिया में बड़े से बड़े होटल्स होकर आ जाओगे ना, तो भी आपको अपने घर जितना सुख कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में लोगों को आप हैंडसम की कैटेगरी में 100 में से 100 मार्क्स भी दे दोगे ना, तो भी आप अपने घर वालों को ही सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा इंसान मानोगे। मतलब जो चीज अपनी होती है वो ही अपनी होती है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और अभी रिसेंटली करीना कपूर खान अपनी एक मूवी के लॉन्च में पहुंची हुई थी, और उन्होंने अपना अपनापन अपने भाई के प्रति, हाँ जी, रणबीर कपूर के प्रति दिखा दिया। उन्होंने बोला कि जब से रणबीर की मूवी एनिमल आई है, तब से हर कोई ऐसी ही एक्शन मूवी करना चाह रहा है, एक ट्रेंड सा आ गया है। तो ये जिक्र करना कि आजकल एक्शन मूवी चल रही है, और इसको इस तरह से जिक्र करना कि रणबीर कपूर के आने के बाद से एक्शन मूवी चल रही है, इन दोनों में फर्क होता है बॉस, है ना। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
0: डेफिनेटली एक नहीं दो नहीं हमारे पास 10-10 रीजंस है कि हमें एक ही तरह के इनविटेशन आ रहे हैं, कुछ नई जगह से नया इनविटेशन नहीं आ रहा है कि अच्छा ये अगर आप इंजॉय करने गए तो कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, राइट? मतलब वही दोस्तों के संग जाकर किसी रेस्टोरेंट में बैठना, वही दोस्तों के साथ जाकर किसी मॉल में विजिट करना, दोस्तों के साथ मरीना बे टहल कर आना, समथिंग लाइक दैट। पर हाँ, ये जो मोनोटोनस चल रहा है ना सारा, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया जा सकता है। हाँ जो सिंगापुर में डेफिनेटली बहुत सारे लाइव शोज होते रहते हैं, लेकिन ये लाइव शो थोड़ा हटकर है। डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऐसा वाला है कि एक बार यहाँ पर जाने के बाद आप बार बार जाएंगे मेरी जान। तो बातें ध्यान से सुनो, एक सवाल भी कर रहा है आपका इंतजार। सो सुहानी शाह का स्पेल बाउंड शो मेंटलिज्म एक्सपीरियंस इंग्लिश में होस्ट करने वाली है सुहानी, एंड डेफिनेटली आप पूरी फैमिली के साथ एंड अक्रॉस द ग्लोब आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप लेकर जा सकते हैं, एंड अक्रॉस द आइलैंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। सो एक माइंडफुल मैजिक एक्सपीरियंस आप करेंगे 20 सितंबर 6 PM ऑनवर्ड्स, क्रेटा आयर पीपल्स थिएटर, 308 क्रेटा आयर रोड, सिंगापुर। टिकट्स अवेलेबल हैं सिस्टिक सिंगापुर पर। एनीवेज इतनी सारी मैंने बातें कर ली, लेकिन इतना कुछ बताया है तो एक सवाल तो बनता है बॉस, एंड दैट इज सुहानी शाह का ये जो शो है ये कौन सी लैंग्वेज में वो परफॉर्म करने वाली है? क्विकली बताओ मेरी जान। मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और नंबर है 9151896।

0: देखो अभी तक ना हम लोग सिर्फ आसपास वाले लोगों की चिंता कर रहे थे कि नहीं नहीं आपका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा ये मेडिसिन ले लो, ऐसे रह लो, वैसे कर लो, ये चीजें आसपास वाले लोगों तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है इंटरनेट की वजह से, तो हम दूर दराज तक लोगों को देखते हैं परेशान होते हुए और उनकी चिंता करने लगते हैं। हाँ, सो रेडियो मसीर 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड रिसेंटली जब से सलमान खान उसी रियलिटी शो में जहां पे वो होस्ट की तरह नजर आते हैं ना, वहां पर नजर आए तो लोगों ने उसकी हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों ने पता है क्या किया है, पिछले 3-4 साल में सलमान खान स्क्रीन पर कैसे नजर आ रहे हैं और इस बार कितने वीक नजर आ रहे हैं, इसका कंपैरिजन शुरू कर दिया है। मतलब ये चिंता कहें या क्या कहें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ लोग सलमान खान की चिंता तो कर रहे हैं और वो भी अति में कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं इनकी तबीयत खराब है, बस ये बताना नहीं चाहते, बस ये कमाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, सो रेडियो मसीर 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपसे पूछना चाहेगी, क्या आप भी सलमान खान की चिंता करते हैं? तो 9151896 पे टेक्स्ट करके बताओ मेरी जान। आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: एम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट। मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: होली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन।
2: नो।
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
4: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
5: रहो। एक बात तो सच है कि जो बातें हम बोल कर डांट कर पुचकार कर समझा कर नहीं बोल सकते, वो बातें गाने कह जाते हैं। वो जो कहते हैं ना कि बहुत वक्त से हम एक पीस इन्वायरमेंट ढूंढ रहे थे, वो पीसफुल इन्वायरमेंट आपको एक अलग अंदाज में मिल रहा है, एक अलग ट्रेंड में मिल रहा है। मैं यूँ बोलूँ, आप भजन को याद कर रहे थे या आपके घर की दादी बाबा या घर के बुजुर्ग, ऐसे एटमोसफेयर को अगर थोड़ा भी मिस कर रहे थे तो भाई भजन जैमिंग सिंगापुर में होने वाली है। राइट, आपने सही सुना। सो इंडिया के पहले ऐसे ब्रदर सिस्टर ड्यूओ जिनके तमाम शोज शादियों से लेके इवेंट से लेकर एक ऐसे ही कैंडिड इवनिंग तक लोगों ने पसंद किए हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर के इवेंट्स भी उन्होंने होस्ट किए हैं। प्लस आप कह सकते हैं इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इन दोनों का जिक्र किया है, प्राची एंड राघव। वो अपने सिंगापुर विजिट कर रहे हैं अपने शो बैक स्टेज सिबलिंग्स के लिए। आपको अटेंड करना चाहिए ये शो। 26 सितंबर एंगेज थिएटर 2 सनटेक्स सिंगापुर में होने जा रहा है ये। सो एक शाम भजन जैमिंग के नाम, यहाँ आपको एकदम धार्मिक वातावरण मिलेगा, सात्विक खाना मिलेगा, क्या कुछ नहीं है यार। सिस्टिक सिंगापुर से टिकट बुक कराओ और पहुंचो एंगेज थिएटर 2 सनटेक्स सिंगापुर 26 सितंबर। मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।
6: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: देखो टैलेंट किसके अंदर नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी एक ना एक टैलेंट तो है, मतलब कोई ना कोई एक यूएसपी है जो आपको बाकियों से अलग बना रही है। हाँ, मे बी आपका जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो माइंडसेट है, आप जिस चीज को डेवलप कर रहे हो, आप जिस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये सारी चीजें जो है ना वो अपने आप में बहुत ही खास है। तो अगर आप एक बिजनेस लाइन में हो, आप एक स्टार्टअप लाइन में हो, आप अपने फैशन इंडस्ट्री से लेके हैंडीक्राफ्ट से लेके होम डेकोर से लेकर किसी भी तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो, तो आप शोकेस कर सकते हैं अपना बिजनेस काफी नॉमिनल रेंज में, है ना। कहाँ? फेस्टिव बाजार 2026 में। प्रीमियम टेबल आपको $100, स्टैंडर्ड टेबल आपको $80 में ही मिल रही है। सो वंस अगेन इस बार त्योहार शुरू होने से पहले माउंट बैटन CCIAEC प्रेजेंट्स फेस्टिव बाजार 2026, एक ऐसा सेलिब्रेशन जहाँ पे शॉपिंग, फूड, कम्युनिटी, फन और बच्चों के लिए बहुत सारे एंटरटेनमेंट लाइव एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। मतलब शॉपिंग की शॉपिंग भी हो जाएगी और आपका बिजनेस भी शोकेस हो सकता है। डिटेल्स के लिए कॉल कीजिए 8330-2518 पर। डेट है 27 सितंबर 10 AM to 6 PM माउंटबेटन CC मल्टीपर्पस हॉल। मैं आरजे रवर मसी मॉर्निंग शो पर।

0: सुन टकाट।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: यू नो वॉट, शुरुआत में आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, फिर एक पॉइंट के बाद जब आप बहुत फेमस हो जाते हैं तो उसके बाद ना स्ट्रगल करने का मन करता है और ना जरूरत पड़ती है। आपकी लाइफ में भी ऐसा पॉइंट जल्द से जल्द आए, मैं तो बस यही बोलूंगी। मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि बहुत सारे हमने ऐसे फैशन डिजाइनर्स देखे हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स के लिए कस्टमाइज करते हैं कपड़े, और बहुत सारे हमने ऐसे फैशन डिजाइनर्स देखे हैं जो कि बॉलीवुड को टच भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के वेडिंग फंक्शंस, पर्सनल फंक्शंस जो होते हैं ना, उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है ना, उनको सॉर्ट कर रहे होते हैं। तो उन्हीं में से एक नाम है सभ्यसाची, राइट? इन्होंने दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, प्रियंका, आलिया, इन सबकी शादियों की जो आउटफिट्स है ना, उन पर काम किया। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि भाई आप तो इतने बड़े नाम हैं, आप तो और कमा सकते हैं, आप तो ये हैं, आप वो हैं, आप बॉलीवुड में क्यों नहीं हाथ रखते, तो उन्होंने बोला कि मैं बॉलीवुड में ऐसे कपड़े नहीं भेज सकता कि वो किसी और के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कस्टम हो। मैं एज अ डिजाइनर ऐसे कपड़े बनाता हूँ कि जो मैंने बनाया है सामने वाला वही पहने, तब जाके मुझे एज अ डिजाइनर जो है ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, बड़े बड़े लोग की बड़ी बड़ी बात। और ये इन्होंने सरकास्टिक टोन में बहुत सारे डिजाइनर्स को जवाब भी दिया है कि ये क्यों नहीं इस लाइन में आ रहे हैं। चलिए, ऑन दिस नोट मी आरजे दोपहर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मैं थोड़े वक्त के लिए लाइन बदलूंगी लेकिन जल्द आपसे मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूट पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे। पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: All music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
3: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge.
1: हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: सिमरन तू आ गई, मैनू तो लगया तू आना ही नहीं। नाउ चक दे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live. 25.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
1: एक बात बताइए, अगर फॉर एग्जाम्पल टीवी पर आपका फेवरेट गाना आने वाला है लेकिन उससे पहले आ रहे हैं 3 बोरिंग गाने, क्या करोगे? आज अगर होता इस टाइम पे तो स्किप कर जाते, करेक्ट? बट 90s का क्या जवाब होता भाई, बैठना भी है, देखना भी है और इंतजार करना पड़ेगा। सुनने के लिए तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। आपका इंतजार होता है खत्म, जी हाँ, थर्सडे तक का इंतजार करना पड़ता है मस्ती 90s मिक्स टेप शुरू करने के लिए। रेडियो मस्ती 24/7 में अंतरा यहाँ पर आपके साथ, आपकी 90s वाली अंतरा, एंड ये इंतजार में ही वो मजा है क्योंकि ये फील देता है कि कैसे टीवी पर 90s में कुछ भी देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता था। एंड जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो सैटरडे सुन रही हूँ, क्या हो गया तुमको अंतरा, तो मतलब आप ऑनकोर सुन रहे हैं इस शो का, जस्ट इन केस। ऑलराइट भाई, हम एक ऐसी जनरेशन है जिनके बचपन में स्किप बटन था ही नहीं। फेवरेट सॉन्ग के लिए इंतजार, क्रिकेट मैच में बारिश रुकने का इंतजार, पापा न्यूज़पेपर फिनिश करें तो हम कॉमिक्स या स्पोर्ट्स पेज पे जाने का वो इंतजार, बाजार गए और मम्मी किसी आंटी से मिल गए, अब आप भी वही साइड में खड़े रहो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंतजार। ये कॉन्वर्सेशन खत्म होने का कोई ETA बिल्कुल भी नहीं है और शायद इसी वेटिंग के बीच 90s ने हमें इतनी सारी डिटेल्स दे दी जो आज भी दिमाग में परमानेंटली सेव्ड है। जैसे नेबरहुड ब्यूटी पार्लर के बाहर वो हेयर स्टाइल के अतरंगी पोस्टर्स, ओके, फोटो में हेयर स्टाइल इतना ग्लैमरस, ओके, और अंदर आंटी पूछ रही है स्टेप कट कर दूं, बॉय कट कर दूं। स्पोर्ट्स शॉप के बाहर हैंगिंग क्रिकेट के वो बैट्स, सचिन का नाम नोटबुक पर लिखा हुआ, गली में कोई नया बैट लेकर आए तो पूरी टीम उसको इंस्पेक्ट करे जैसे BCCI का अप्रूवल हम उसको देंगे। एंड फैशन सटल तो हम कभी थे ही नहीं, आज भी नहीं है, प्रिंटेड शर्ट्स, चंकी वॉचेस, कलरफुल शूलेसेस, हेयर बैंड्स, डेनिम ऑन डेनिम, ओ माय गॉड। और बॉलीवुड का अगर कोई फिल्म हिट हो जाए बस फिर फिल्म थिएटर में नहीं रहती थी, मार्केट में आ जाती थी, हीरो का हेयर कट बार्बर शॉप में, हीरोइन का सूट का कपड़े के दुकान में, गाना शादियों में, डांस स्टेप स्कूल के फंक्शंस में, डायलॉग क्लासरूम में, और मूवी का नाम कभी पेंसिल बॉक्स के पीछे तक पहुंच जाता था। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू टुडे ऑन मस्ती 90s मिक्सटेप। सिर्फ याद नहीं, थोड़ा अरे हाँ ये भी तो होता था ना, हम गलियों में जाएंगे, बाजार में घुसेंगे, स्कूल के बाद के आवर्स में, स्कूल के नहीं संडेस के आफ्टरनून्स में भी चलो चल सकते हैं, क्रिकेट, क्लोथ, फूड, टीवी, म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड के बैक स्टेज में भी, बिकॉज कुछ फिल्म्स के पीछे की कहानियां वो भी तो जाननी बनती ही है। सो एक काम करिए, फोन को 2026 में रख दीजिए, दिमाग के कैलेंडर को हम सीधा 90s पे सेट कर देते हैं। मैं आपके 90s वाली अंतरा अगले कुछ घंटे सडनली आपको यही बार बार बोलने पे मजबूर करने को तैयार है कि ओ गॉड मैं तो ये भूल ही गई थी, या ओ माय गॉड ये भी तो होता था। स्टे ट्यून्ड।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे wholesome, healthy options.
4: GGMart, your personal grocer.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
1: What algorithm? What kind of मतलब क्या आप कहना चाहते हो? Algorithm नाम की चीज़ इतना सिर्फ हमने अपने मैथ के शायद उसमें पढ़ा होगा क्लासेस में, but other than that, I don't think so. We had any clue about this one. Radio Masti 24/7 Antrop के साथ यहाँ पर चल रहा है Masti 90s mixtape. भाई 90s में algorithm नहीं था, फिर भी पूरे India को somehow एक ही time पर पता चल जाता है कि क्या cool है. Seriously, but how? No. Of course, Instagram नहीं और reels भी नहीं and hashtag trending definitely not. Influencer नहीं, guys you need this. ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है. फिर भी स्कूल में मंडे को एक बच्चा कोई नई चीज लेकर आ गया. बस ट्यूसडे तक आधी क्लास ने उसको इंस्पेक्ट कर लिया. वेंसडे को घर पर डिमांड हो गई कि पापा मम्मी हमें को भी यही वाला चाहिए. उसके बाद मम्मी का एल्गोरिथम उसके पास है तो तुम्हारे पास होना थोड़ी ना जरूरी है. एक डायलॉग जो मेरी मम्मी तो बहुत ही कॉमन मारती थी, आप लोग के पेरेंट्स में भी कई बार ऐसा कुछ सुना होगा कि वो अगर कुएं में कूद रहा है तो तुमको भी उसके साथ जाके कुएं में कूदना है. कौन करता है ऐसा? बट या दीज वर 90s काइंड ऑफ मुहावरास एंड एग्जांपल्स आवर पेरेंट्स यूज्ड टू गिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट एंड ऑफ डिस्कशन बेसिकली हो जाया करता था. बॉलीवुड का नेटवर्क तो और भी पावरफुल था. फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई, हीरो ने कुछ अलग पहन लिया, हीरोइन का हेयर स्टाइल या आउटफिट वो हिट हो गया और कुछ ही टाइम में लोकल मार्केट में मैडम पिक्चर वाला डिजाइन आया है. कोई ऑफिशियल कोलैबोरेशन नहीं, कोई शॉप का लुक नहीं, बस दुकानदार को पता था कि भाई इंडिया ने स्क्रीन पे क्या देखा है. म्यूजिक का भी काफी सिमिलर सा सीन था. एक गाना हिट हुआ, पहले किसी घर में सुनाई दिया. अरे भाई हमारे वो जो कसेट वाले भैया की दुकान थी वो इसीलिए था, उनका प्रमोशन स्ट्रेटजी यही था. कसेट लगाते थे नई वाली, जोर जोर से प्ले, पूरे गली में वही गाने सुनाई दे रहे हैं एंड देन इट अनकॉन्शियसली काइंड ऑफ वो अफेक्ट करता ही था. हमारे तो आर्चीज वाला भी यही करता था, पैसे लेकर करता था. ये उस टाइम पे 90s का कोलाब हुआ करता था इस तरह का मार्केटिंग का. वेल फिर मार्केट में तो सुनाई देता था, ऑटो में भी सुनाई देता था, शादियों में सुनाई देता था, स्कूल फंक्शंस में सुनाई देता था और जब तक आप थोड़ा बोर होने लगे नेबरहुड की डांस परफॉर्मेंस अभी भी बाकी थी. और क्रिकेट, एक स्टार बैट्समैन ने कोई शॉट मारा, अगली शाम गली में चार बच्चे, देख मैं भी तेरे को बताता हूँ कैसे मारते हैं, मैं बताता हूँ मैं. रिजल्ट, बॉल सीधा किसी की बालकनी. टेक्निक कॉपी हुई या नहीं हुई ये पता नहीं, बट कॉन्फिडेंस 100% ट्रांसफर हुआ करता था. इवन लैंग्वेज ट्रेवल्ड लाइक दिस, राइट? कोई मूवी डायलॉग पॉपुलर हुआ, नेक्स्ट थिंग यू नो स्कूल के कॉरिडोर में एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ यूजिंग इट. किसी सीनियर ने एक नया स्लैंग बोला, विद इन डेज जूनियर क्लासेस तक डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाती थी. भाई हमें ना वाईफाई की कोई जरूरत पड़े, हम ह्यूमन फाई थे. एंड द फैशन ट्रेवल्ड इवन फास्टर. वन कूल कजन कम्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, फॉर मी कोलकाता, लाइक Whatever. New shoes, different jeans, interesting hairstyle. बस पूरी family gathering में silently scanning चल रहा होता है कि ये नया है. And then somebody asks casually कि अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? Boss, that's your product link, okay? 90s का. And I find this fascinating about the 90s. Information slower थी, but culture traveled really, really fast, okay? Through cinema halls, through music, cricket grounds, markets, हमारे जो older cousins थे, school corridors, beauty parlors, barber shops, weddings, mohallas. One person saw it, 10 people copied it, 100 people talked about it, and suddenly, yes, here you go. That's a trend. Koi blue tick nahi, koi follow account nahi, koi recommendation engine nahi deciding what India should look like. We did that ourselves. Koi trending tab nahi tha because India itself was the trending page, okay? और आज की मस्ती 90s mixtape में उस पेज को और थोड़ा अभी फिलहाल स्क्रॉल करते हैं गानों के साथ साथ. बट फिंगर से नहीं, मेमोरी से मेरे दोस्त, मेमोरी से.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for application form.
4: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: इतनी ऐसी ऐसी डिटेल्स में बातें मुझे याद आती हैं व्हाइल आई टॉक अबाउट 90s का वक्त, कि चलिए एक और डिटेल की तरफ ले चलती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ अब आपने जो है इमेजिनेशन का जो वीडियो है वो भी ऑन कर ले। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ मस्ती 90s में एक स्टेप चल रहा है ऑफकोर्स। सो 90s के घर में फ्रेश बेडशीट बिछाना टेक्निकली जो है मम्मी का काम हुआ करता था, लेकिन उस प्रोसेस को अननेसेसरीली डिफिकल्ट बनाना वो आई थिंक हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। नाउ पिक्चर दिस, संडे आफ्टरनून, ओके, पुरानी बेडशीट निकली, फ्रेश वाली जो है बेडकम बॉक्स से निकाली गई। हमारे यहाँ पे बेडकम बॉक्स में जो है वो नेप्थलिन बॉल्स वॉल्स के साथ मम्मी एकदम सजो के रखती थी। टिल डेट शी डज द सेम बाय द वे, लेट मी टेल यू दैट। सो अब ऑफकोर्स वो हमें सिखा रही हैं कि कैसे करना है। सो मम्मी एक साइड में पकड़ेंगी एंड देन बाकी जो है सब जो भी अनफॉर्चुनेटली आसपास मिल गया सब दूसरी साइड में पकड़ेंगे और फिर वो मैजिकल मोमेंट, 1 2 बेडशीट में हवा, क्योंकि पहले उसको हम ऊपर सारा ऐसा करके ऊपर उड़ाते थे, उड़ा के कोने पकड़े हुए उड़ाते थे एंड देन उसके बाद नीचे, वो नीचे एक एकदम बबल सा गोल सा जो है बन जाता था बेडशीट हवा में। बट हमारे दिमाग में था मौका, जब वो बेडशीट ऊपर जाकर एक ह्यूज बलून जैसी बनती थी ना, नीचे एक सेकंड के लिए पूरा सीक्रेट टेंट बन जाता था एंड व्हाट वी यूज्ड टू थिंक वाज इसके अंदर घुस जाते हैं We used to do that a lot of times बचपन में। And mummy, we used to be बाहर निकलो हम बेडशीट के नीचे, और एक मिनट बस हमें एक मिनट क्यों, क्या मीटिंग चल रही है अंदर। सो बेसिकली वो बेडशीट धीरे धीरे नीचे आती, फेस को टच करती, हम अंदर से हाथ पैर मार रहे होते उसमें। हमारा फन का मतलब डेफिनेशन ही बहुत अलग था। एंड हाउ क्यूट इज दैट, हाउ अमेजिंग इज दैट, आया ना सोच के मजा, है ना। सो आउटसाइड बेसिकली मम्मी डेस्परेटली ट्राइंग कि भाई चारों कॉर्नर मीट कर जाए, इसको भी रहने दो, क्रीस हो जाएगी, अभी बिछाई थी तुम लोगों ने खराब कर दी, ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग। एंड समहाउ फ्रेशली चेंज्ड बेड हैड दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन किड्स 90s में। मम्मी ने पिलो सेट किए, बेडशीट परफेक्टली टक की, हाथ से उसको एकदम सपाट कर दिया, स्मूथ कर दिया। फिर वो एक सीख वाली झाड़ू जो है जो हमारे घरों में पाई जाती है, सो उससे ना रोज रात को जो है उसे सफाई ऐसे करके सपाट करके उसके बाद उसको ऐसे साफ कर दिया जाता था फॉर सम रीजन। सो वेल, सो विद इन 30 seconds कोई उस पर जंप कर रहा है, कोई उल्टा लेट गया, किसी ने पिलो उठा लिया एंड वहां से फिर चीखने की आवाज, अभी तो बेड बनाया था। द सेंटेंस हैड जेन्युइन पेन इन इट, और बेडशीट टक करने का भी अपना साइंस था, ठीक है। मैट्रेस को उठाओ, कॉर्नर को अंदर पुश करो, फिर उधर से खींचो, फिर हमने एक्स्ट्रा खींच दिया, अब उनकी साइड निकल गई, अब इतना नहीं करना है। बस अपेरेंटली बेडशीट फिटिंग वॉज अ प्रिसिशन इंजीनियरिंग कोर्स फॉर विच वी वर कंप्लीटली अनक्वालिफाइड क्लियरली। और फ्रेश बेडशीट की वो फीलिंग स्पेशली रात को, मतलब नहा लिया है, फैन चल रहा है, पिलो कवर फ्रेश, बेडशीट ना थोड़ी ठंडी ठंडी सी, यू स्लाइड इन टू द बेड एंड फॉर सम रीजन स्लीप ऑटोमेटिकली बेटर लगती थी। कोई थ्रेड काउंट का डिस्कशन नहीं, कोई इंजेक्शन कॉटन रिसर्च नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं होता था, बस एक ही रिव्यू कि ये वाली बेडशीट ठंडी ठंडी लगती है, बहुत ही अच्छी सी। एंड टुडे व्हेन आई थिंक अबाउट इट, दैट फ्लाइंग बेडशीट वाज प्रोबेबली इन द एयर फॉर व्हाट 3 seconds, बट बचपन में वो 3 seconds में भी गेम इन्वेंट कर लेते थे हम। हमें कहाँ मतलब कोई इतना एज सच टॉय का, स्क्रीन का, प्लानिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था, बस मम्मी बेडशीट बिछा रही है और वो हुआ और हम उसके नीचे अपनी टेम्प्रेरी दुनिया बना के बैठ गए एंड फिर ऑब्वियसली बाहर निकलो, मुझे बेडशीट बिछाने दो। हाय, क्या दिन थे वो।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way. Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Aamir Khan wondered.
1: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना. ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, जाने जाना.
8: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप. थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल जो मुझे यहाँ पर लिख रहे हैं. आई नो, इस तरह से जब बात होती है यहाँ पर 90s की, कैसे एकदम यादों का जो है पिटारा खुल जाता है. एंड इट इज सो वेरी, सच अ नाइस फीलिंग, इजंट इट? सो वेल भाई, 90s में आई थिंक सिर्फ हम नहीं, लाइट भी काफी ड्रामेटिक एंट्री लेती थी. 90s में रूम की लाइट को ऑन करना एक इंस्टेंट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं था, स्पेशली मिडिल क्लास घरों में. एटलीस्ट मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से बता सकती हूँ. सो ऐसा नहीं है कि स्विच दबाया और रोशनी जो है वो हो गई. एक्सक्यूज मी, थोड़ा सस्पेंस, स्विच ऑन किया, ट्यूबलाइट जो है वो कुछ देर तक हमारे घर में तो ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक ऐसे करती थी. एक सेकेंड के लिए रोशनी, फिर अंधेरा हो गया, फिर फट फट फट फट वो एक आवाज आती थी ब्लिंक की, और हम नीचे खड़े उसको देख रहे होते थे जैसे एनकरेजमेंट देने का, अभी बस हमारा शुरू हो जाएगा कि आजा, आजा, बस बस बस बस क्लॉक. एंड फिर एक, फिर थोड़ा ब्लिंक होने के बाद वो ऑन हुआ करती थी, पूरा रूम सडनली वो ब्राइट व्हाइट लाइट में. ठीक है, बस 90s में ट्यूबलाइट भी बॉलीवुड की हीरोइन से कोई कम नहीं थी. प्रॉपर ड्रामेटिक एंट्री के बिना स्क्रीन पर आना ही नहीं है. और अगर ट्यूबलाइट ने डिसाइड किया कि आज मैं काम नहीं करेगी, देन घर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाता है. जैसे कि पापा, बाद में जाके मैं और मेरा भाई भी करने लगे थे कि उसका स्टार्टर खराब हो गया होगा. स्टार्टर? 90s kids, टेल मी यू रिमेम्बर द टाइनी सिलेंड्रिकल फेलो. ठीक है, पापा चेयर या स्टूल पर चढ़ते थे, स्टार्टर को थोड़ा सा ट्विस्ट करते थे, ट्यूब थोड़ा सा ब्लिंक ब्लिंक करती थी, देन पापा यूज टू काइंड ऑफ ट्विस्टेड अगेन. हम नीचे से हुआ नहीं जैसे हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम फिर भी पूछेंगे. फिर ट्यूब को हल्का सा टैप किया टक टक करके, एंड सडनली इट वॉज ऑन. एंड देन डैड जो है वो नीचे उतरते हुए कि देखा, देखा क्या आपने ट्यूब लाइट को दो थप्पड़ मारे, और वो डर के जल गया. सभी मतलब डरते हैं देखो पेरेंट से, कभी स्टार्टर निकाल कर वापस लगाओ, कभी ट्यूब को थोड़ा सा रोटेट करो, कभी स्विच ऑफ ऑन करो. और घर के बाकी मेंबर्स फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे कि कनेक्शन लूज हो गया होगा, ट्यूब चली गई है शायद, लगती पहले तो चल रही थी बट खराब ही हो गई होगी, स्टार्टर चेंज कर दो. सो नोबडी हेयर वॉज एन इलेक्ट्रीशियन, एवरीबडी हैड एन ओपिनियन. यस, और एक ट्यूबलाइट होती थी जो टेक्निकली चल रही है लेकिन परमानेंटली फ्लिकर करती रहेगी. आप पढ़ने बैठो, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, मम्मी इसको चेंज करवाना पड़ेगा, दैट सेंटेंस कुड रिमेन पेंडिंग फॉर वीक्स बिकॉज नेक्स्ट डे ट्यूब परफेक्टली चल गई है. फैमिली में अब तो ठीक है, ट्यूबलाइट वुड कम क्वाइटली से, ओके बेटा वापस से रात को मैं ब्लिंक ब्लिंक करूंगा. एंड दैट लिटिल स्टार्टर हैड अनदर आइकॉनिक स्ट्रॉन्ग साउंड. ट्यूब जब स्ट्रगल करती थी तो वो टिक टिक टिक टिक टिक, एंड फिर फाइनली एक साइलेंस, लाइट स्टेबल, लाइफ रिज्यूम्स. आज जो है क्रेजी है, आई हैव स्मार्ट बल्ब्स इन माई होम, ओके, विच आई कैन ऑपरेट. यहाँ पे बैठे हुए स्टूडियो में मैं बैठी हूँ और मैं घर में उनको ऑपरेट कर सकती हूँ थ्रू माई फोन. Crazy, right? Voice command भी हो गया है कि lights on, brightness 40%, warm white, cool white, mood lighting. बस हमारे पास भी mood lighting थी. Tube immediately जल गई तो good mood, flicker कर रही है तो suspense mood. बिल्कुल नहीं जल रही है तो papa mood, yeah that one. And weirdly I can still hear that sound. Switch का click, starter का tick tick, tube का flicker. And then that sudden white glow, ठीक है? It was such an ordinary part of the home that nobody noticed it until one day technology became silent and instant. And वो blink blink on भी childhood की आवाजों में ऐड सी हो गई. 90s में बॉस रोशनी भी सीधा नहीं आती थी, थोड़ा performance देकर ही आती थी.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: Oh my God, ये क्या ही याद आ गया मुझे। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप। बहुत मजा आएगा, आप सुनो मेरी बात, ठीक है भाई। 90s में घर से निकलते वक्त एक इमरजेंसी ऐसी थी जिसके लिए कोई वार्निंग नहीं मिलती थी। आप परफेक्टली नॉर्मल चल रहे हो, ठीक है, आपने एक कदम लिया, दूसरा कदम लिया एंड सडनली फटैक, हवाई चप्पल का स्ट्रैप सोल से बाहर। जी हाँ, वो नीली वाली स्ट्रैप की बात कर रही हूँ। बस एक पैर नॉर्मल, दूसरे पैर में चप्पल, आपसे ऑफिशियली मैं आगे नहीं जा सकता वाला, मतलब ऐसे कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन 90s में चप्पल टूटने का मतलब जर्नी कैंसिल, नो वेज। इंजीनियरिंग जरूर स्टार्ट हो जाती थी। सबसे पहले तो डिनाइल, स्ट्रैप को होल में वापस पुश करो कि हो गया, फिर दो स्टेप चले, फिर से फटाक वो निकल गया वापस से बाहर। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई, नीचे वाला रबर स्टॉपर घिस गया है और यहां से इंडियन जुगाड़ का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हुआ करता था। किसी के पास सेफ्टी पिन है तो लाओ, स्ट्रैप को होल से निकालो, नीचे पिन लगा दो, कभी कोई छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा, कभी रबर, कभी जो अवेलेबल हो उसको बेसिकली एडजस्ट करो। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल सिंपल था, स्ट्रैप को ऊपर आने नहीं देना है वापस, एंड हाउ, दैट्स बिटवीन यू एंड भगवान जी, पता नहीं कैसे। और अगर कुछ भी नहीं मिला, देन केम द लेजेंडरी ब्रोकन चप्पल वाली चाल हमारी। टो से स्ट्रैप को ग्रिप करो, पैर को जमीन से ज्यादा उठाना नहीं है, फिर शफल एंड ड्रैग एंड शफल एंड ड्रैग। सडनली आप 12 साल के नहीं, 97-year-old philosopher returning from a long journey type feel दे रहे लगते हो। And साथ में अगर आपके कोई दोस्त है तो sympathy, वो क्या होती थी, बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। कैसे चल रहा है तू? Yeah, thank you. This is exactly the support we needed at that time, right? फिर रोड साइड अगर मोची मिल जाए, मोची, अरे कम ऑन, मोची तो बुलाते हैं, मोची मिल जाए तो बॉस जैकपॉट लग जाता था। फुटपाथ पर छोटा सा उनका सेटअप, ओके, टूल्स एंड रबर पीसेस, उनकी वो एक सुई होया करती थी, एंड देन द ग्लू, अब चप्पल हैंड ओवर करो। ऐसे खड़े हुए उनके मोची के दुकान के बाहर, एक एक, एक पैर नंगा करके खड़े हुए, वो देखेंगे, दो मिनट में कुछ ऐसा करेंगे जो घर में हम 20 मिनट तक भी कुछ करके नहीं कर पाते, एंड हो गया, एंड चप्पल यू नो बैक इन एक्टिव सर्विस। नया पैर वो क्यों लेना है भाई, अभी तो रिपेयर होना हुआ है यहाँ पे। सो 90s में रिप्लेस से पहले एक पूरा चैप्टर होता था विच इज रिपेयर, ठीक है, वॉच का बैंड टूट गया है, रिपेयर, स्कूल बैग की चेन, रिपेयर, शू सोल निकला, मोची के पास जाओ, साइकिल पंचर हुआ, पंक्चर वाले भैया के पास जाओ, चप्पल का स्ट्रैप जुगाड़। और हर कॉलोनी, हर मार्केट में कोई ना कोई बंदा था जो चीजों को देखकर बोलता था कि भाई हो जाएगा, आपके अपने अभी भी हुआ करेंगे, मेरे तो है, मेरे मोहल्ले में आई नो कि मेरा अगर वॉच का स्ट्रैप या कुछ भी उससे रिलेटेड है, देयर इज दिस वन दुकान एंड वन भैया हु विल जस्ट, आई विल, आई गो एंड आई गिव ऑल दोस थिंग्स टू हिम एंड ही जस्ट टेक्स केयर ऑफ इट। एंड आई लव दैट सेंटेंस कि हो जाएगा, लाइक कोई ऐसा कभी नहीं बोला कि नहीं इसको अब तो नया ही खरीदना पड़ेगा, अनलेस बिल्कुल ही कोई भी ऑप्शन ना ही बचा हो। एंड आई एम श्योर दैट आपके मोहल्ले, आप जहां से आते हो वहां पर टिल डेट आपको भी वो दुकान पता होगी कि कहाँ जाना है। आई तो समटाइम्स वेट टू गो बैक टू इंडिया एंड यू नो गेट ऑल दीज रिपेयर थिंग्स डन, या टिल डेट।

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: एक मच्छर रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा आपके साथ 90s यानी कि मस्ती 90s मिक्स टेप जो है वो चल रहा है। 90s के घरों में रात को एक साउंड ऐसा था जो डीप स्लीप से भी इंसान को इंस्टेंटली अलर्ट कर देता था। कान के बिल्कुल पास आकर बस नींद झुक जाती थी, आंख जो खुलती थी एंड द फर्स्ट रिएक्शन वाज अरे यार मम्मी मच्छर है मच्छर। अब देखिए इतना टाइनी सा मच्छर है लेकिन रिस्पॉन्स फुल फैमिली इमरजेंसी वाला आता था कि भाई पहले लाइट जलाओ, ठीक है, ट्यूबलाइट अपना ब्लिंक ब्लिंक ड्रामा करके ऑन होती थी एंड अब एवरीबॉडी इज स्कैनिंग, ठीक है, वॉल देख रहे हैं, सीलिंग देख रहे हैं, कर्टन, अलमारी कहां गया, कोई विस्पर भी क्यों कर रहा है पता नहीं, जैसे मच्छर हिंदी समझ कर एस्केप प्लान बना लेगा वहां से जाने का, ठीक है। सडनली उधर बैठा है, सबकी नजर एक पॉइंट पर, एक बंदा जो है स्लोली अप्रोच कर रहा है, हाथ रेडी, आपकी ताली जो है वो भी एकदम रेडी, बट मिस्ड कि अरे यार उड़ गया एंड नाउ थिंग्स गेट सीरियस। मम्मी के हाथ में टॉवल, इमेजिन यू नो यू विल लव इट, मम्मी के हाथ में टॉवल, पापा के हाथ में फोल्डेड न्यूज़पेपर, बच्चों का काम एब्सोल्युटली नथिंग यूजफुल, बस कमेंट्री करते रहते थे हम, वो रहा नहीं उधर कर्टन के पास। सो 90s का मॉस्किटो हंट वॉज बेसिकली लाइव क्रिकेट कॉमेंट्री, दैट ही इज मूविंग टुवर्ड्स द विंडो, ही चेंज द डायरेक्शन एंड देन पॉप आउट टेक्स अ शॉट एंड नो ही मिसेस एंड द टॉवल टेक्निक। सो बेसिकली टॉवल को थोड़ा सा वैसे वो ट्विस्ट करते थे मच्छर वॉल के पास एंड फटाक वॉल पर टॉवल, एवरीबडी मारा टॉवल को, स्लोली हटाओ, नथिंग, नहीं यार भाग गया। बस हाउ मच रिस्पेक्ट डिड वी गिव टू दैट वन मॉस्किटो, नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट। फिर किसी को ब्रिलियंट आइडिया कि लाइट बंद करो पता चल जाएगा आवाज से, लाइट ऑफ, 30 seconds का साइलेंस एंड देन मेरे पास है लाइट जलाओ। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग ऑपरेशन के 15 मिनट के बाद मच्छर डिसअपियर, फैमिली एग्जॉस्टेड कि छोड़ो यार सो जाओ हो गया, लाइट्स ऑफ, ब्लैंकेट सेट, आईज क्लोज्ड, एग्जैक्टली 7 seconds लेटर कान के पास है ना, नाउ इट्स पर्सनल। और अगर फाइनली किसी ने मारा, दैट पर्सन डिड नॉट क्वाइटली रिटर्न टू बेड, अनाउंसमेंट होता था कि मिल गया, ठीक है, सब पूछते थे मारा, हाँ, मिशन अकम्प्लिश्ड, नाउ द नेशन कैन स्लीप। ऑफ कोर्स मॉस्किटो कॉयल्स एंड वो कछुआ छाप अगरबत्ती एंड द मैट एंड द रेपेलेंट्स एंड वो जो वो क्या कूद कूद के एक ऐड आता था ना, या वो बहुत अपग्रेड उस टाइम पे हमने ये वाला इवॉल्व होते हुए भी देखा है, बट इस वाले का भी फन दूसरे ही लेवल पे था। अरे कौन सा था, ऑल आउट का था ना वो एड, एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस एड बिकॉज इट्स अ 90s एड एंड वी रिमेंबर एवरीथिंग 90s, राइट। एक वो ऑल आउट का मशीन एड में और वो ना ऐसा उछल उछल के वो मच्छरों को खाता था एंड वी एज किड्स आफ्टर वॉचिंग दैट एड वी यूज टू थिंक दैट ये कितना कूल है, मतलब ही इज लाइक अ पर्सनल पेट, राइट, वो एंड दैट इज व्हाई पीपल बॉट दैट बिकॉज दे लिटरली थॉट जस्ट लाइक अस दैट ये ऐसे कूद कूद के मच्छर पकड़ेगा, नोबडी वाज लाइक इतना दिमाग लगाया ही नहीं हमने कि अरे वो एड है यार वो ऐसे ही एनिमेटेड है वो कूद के नहीं पकड़ेगा। बट दैट वॉज 90s माई डियर्स फ्रेंड्स।

0: पेंसिल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: Not only what we see or what we hear, I think the sensory experience, यानी कि आपकी नाक, आपकी जो वो जो 90s वाली खुशबुएं हैं, that is also so nostalgic, don't you think so? Radio Masti 24/7 पर मैं अंतर आपके साथ Masti 90s mixtape जो है आप सुन रहे हैं। So 90s के बच्चों के लिए stationery shop जाना shopping नहीं था, and trust me on that, आज भी मुझे stationery shop जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, like it's like a Disneyland for me. So sensory experience हुआ करता था वो, उसमें एक item ऐसा था जिसको यूज करने से पहले एक कंपलसरी टेस्ट करते ही करते थे, एंड आई स्टिल डोंट नो लाइक फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाई। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज इरेजर्स, ठीक है, जब नया इरेजर पैकेट से निकालते थे द फर्स्ट इंस्टिंक्ट वुड बी स्निफ इट।

टाइनी बर्गर टाइप एंड बहुत ज्यादा फैंसी हो जाते थे ना, वो मिटाते अच्छा नहीं थे। सो कभी ऐसा क्यूट इरेजर जो टेक्निकली इरेज के लिए ही बना है लेकिन आप उसको यूज नहीं करना चाहते बिकॉज फर्स्ट रब में उसका परफेक्ट कॉर्नर चला जाएगा कि मेरा ये वाला यूज मत करना, ये वाला गुड इरेजर है। गुड इरेजर? तो बैड इरेजर कौन है? वो पुराना ग्रे सा बेचारा इरेजर जिसका एक कॉर्नर ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है, उसको होमवर्क के लिए यूज करो, है ना। वो प्रिटी सा स्ट्रॉबेरी जो है वो डिस्प्ले पीस है ना, कलेक्टर का एडिशन है। एंड फ्रेंड्स के पेंसिल बॉक्सेस को इंस्पेक्ट करना कि तेरे पास क्या नया है, जिप खुली और एग्जिबिशन काइंड ऑफ बिगिंस कि ये देखो मेरा इरेजर, ये कहाँ से लिया, मेरी बुआ दिल्ली से लाई, इम्पोर्टेड फ्रॉम दिल्ली was a thing for us small town girls. Yes, imported from Delhi. लो basically status जो है instantly upgrade हो जाता था। फिर exchange economy भी चलती थी, right? मैं तुझे मेरा pink eraser थोड़ा use करने दूंगी, तू मुझे वो वाला sharpener दे देना। So no paperwork, no contract, 90s की stationery diplomacy अपने ही हमने चालू कर रखी थी। Scented eraser का सबसे बड़ा betrayal, it smells amazing but erasing ability was quite questionable. Now pencil का mark erase करने गए, पेपर पर एक ग्रे सा क्लाउड क्रिएट कर दिया। अब नाउ इफ वी रब हार्ड द पेपर जो है वो फट जाता था एंड इरेजर के क्रम्स दे वर काइंड ऑफ एवरीवेयर। पेंसिल मार्क स्टिल स्टैंडिंग प्राउडली ओवर देयर कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, और वो क्रम्स इरेज करने के बाद हाथ से ब्रश करोगे तो प्रोजेक्ट स्मैश हो सकता है। सो व्हाट डिड वी डू? फूकते थे, फूक करके उसको उड़ाते थे, पूरे डेस्क पर उड़ा दो एंड फिर उसके बाद मेरे पे क्यों उड़ा रहे हो। टुडे स्टेशनरी इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक एंड कोऑर्डिनेटेड, पेस्टल्स, मैचिंग सेट्स, मिनिमलिस्ट डिजाइंस एंड एवरीथिंग। 90s स्टेशनरी लुक लाइक समवन हैड सेड गिव चिल्ड्रन ऑल द कलर्स एट द सेम टाइम एंड वी लव्ड इट, वी स्टिल लव इट।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: जस्ट लास्ट वीकेंड जो है मैं किसी के घर गई थी एंड आई हैड दिस मोस्ट अमेजिंगली इनसेन कॉकटेल। ओके, इट वॉज अ काला खट्टा कॉकटेल। तो उसमें ना उन्होंने काला खट्टा जो एग्जैक्टली जो हम गोले पे डाल के खाते हैं ना, वो वाला टेस्ट उन्होंने क्रिएट किया एंड देन ही पुट चाट मसाला एंड एवरी थिंग इन इट एंड ओ माई गॉड, इट टेस्टेड heavenly and it took me right back to the 90s that how much we enjoyed those barf ke gole with that kala khatta flavor. Radio Basti 24/7 Antrop ke saath and yahan par chal raha hai Masti 90s mixtape. Orange bhi tha, rose bhi tha, but 90s summer mein ye ek aisa decision tha jiske samne exam ke multiple choice question bhi easy lagte the. Aap barf ke gole wale bhaiya ke samne khade ho, samne wo rang birangi syrup ki bottles pure thele pe line pe lagi hui hai, red, orange, green, yellow, purple, aur फिर भैया पूछते कौन सा, बस थोड़ा टाइम दे दो हम लोग का, मतलब दिमाग में चल रहे आप चॉइसेस की, जिंदगी के चॉइसेस कितने सिंपल हुआ करते थे कि ऑरेंज लू, नहीं नहीं काला खट्टा, नहीं वो तो लिया था, हर बार ही लेती हूँ, आज कुछ ट्राई करती हूँ, रोज खसखस वाला ट्राई करते, वो इलेक्ट्रिक ग्रीन वाला जिसका फ्लेवर किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था बट कलर आउटस्टैंडिंग है। 90s में डिसीजन फटीग यहां से ही शुरू होता था और गोला बनता देखना इन इटसेल्फ आई थिंक वाज एन एंटरटेनमेंट। बर्फ का एक बड़ा सा ब्लॉक मशीन में गया, फिर क्रर नीचे, या फिर अगर और भी थोड़ा सा पहले के टाइम पे जाएंगे तो वो एक ग्रेटर के जैसे आता था, तो फिजिकली वो भैया एक लाल कपड़े में बंधी हुई बर्फ को ऐसे ऐसे अपने हाथ से घिसते थे। सो नीचे बेसिकली ये सॉफ्ट क्रश्ड आइस निकल रही है, भैया उसको हाथ से कलेक्ट करके एक स्टिक के अराउंड प्रेस प्रेस प्रेस एंड समहाउ लूज आइस सडनली एक परफेक्ट गोला बन जाती थी। हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि मेरा बन रहा है मेरा। फिर सिरप आती थी एंड बॉस वो थोड़ा सिरप नहीं डालते थे, गोला को प्रॉपर कलर में बिल्कुल बाथ मिलता था, रेड ऊपर से, पर्पल साइड से, ऑरेंज दूसरी तरफ से, अगर आपने मिक्स फ्लेवर बोला है जस्ट इन केस तो कंग्रेचुलेशंस, आपके हाथ में अब एक ऐसी चीज है जिसका कलर नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है एंड दैट फर्स्ट बाइट, ओह माय गॉड, इंस्टेंट ब्रेन फ्रीज, आंखें बंद, क्यों ठंडा ठंडा, फिर दो सेकेंड बाद फिर से, बिकॉज अपेरेंटली लेसन लर्न करना हमारे सिलेबस में तो था ही नहीं। और गोला खाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, सिर्फ नीचे से स्टिक तक पहुंचने से पहले मैनेज कर लो, अदरवाइज फिंगर स्टिकी हो जाएगी, रिस्ट स्टिकी हो जाएगा, समटाइम्स एल्बो तक कलरफुल लाइन वुड हैव ट्रेवल्ड। एंड पहले से ही जो घर से इंस्ट्रक्शन आती थी कि भाई कपड़ों पर कोई चीज, कपड़े नहीं खराब होने चाहिए, ठीक है, द इंस्ट्रक्शन अराइव्ड अप्रॉक्सीमेटली 3 seconds टू लेट क्योंकि हमारे कपड़े खराब हो जाया करते थे। बट द बेस्ट पार्ट केम आफ्टर द गोला, फ्रेंड्स एक दूसरे को अपना दिखा, अपनी टंग दिखा, तेरी पर्पल हो गई, मेरी रेड, मेरी देख, मेरी देख, एंड सडनली 5 kids आर स्टैंडिंग ऑन द रोड प्राउडली डिस्प्लेइंग टंग्स लाइक मेडिकल एग्जामिनेशन बाय विली वोंका। मिरर नहीं, नो प्रॉब्लम, फ्रेंड का रिएक्शन वॉज योर कलर का रिपोर्ट एंड लिप्स एविडेंस वहां पर भी, घर जाके गोला खाया था ऐसा मतलब ऑफकोर्स दिख ही रहा है। नहीं बेटा, आपका पूरा मुंह फ्लोरेसेंट ऑरेंज हो रखा है, केस यही पे खत्म किया जाता है। काला खट्टा वॉज माई फेवरेट जो है फ्लेवर एंड दैट इज वाई व्हेन रिसेंटली आई हैड इट, इट वाज सो नॉस्टैल्जिक फॉर मी। या आई कॉम्प्लीमेंटेड द होस्ट लाइक 10,000 टाइम्स दैट डे। रेडियो मस्ती 24/7 मैं अंतराब के साथ, बने रहिए, यादों का सिलसिला अभी भी चलेगा।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: आई नो आई टोल्ड यू कि भाई 90s के मूवीज की भी बात करेंगे, बट क्या है ना कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी बात करना शुरू करती हूँ, इट इज अ सीरीज ऑफ थिंग्स, एक के बाद एक चीजें मुझे याद आने लगती है, एंड आई एम लाइक ये भी। रेडियो मस्ती 24/7 एंथ्रॉप के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s पे एक स्टेप। वो मूवी याद है, गुप्त हो जाए। 90s में स्पॉइलर अलर्ट नाम का फ्रेज हम यूज नहीं करते थे, लेकिन अगर एक फिल्म आई थी जिसके बाद सिनेमा हॉल से निकलते ही एक वार्निंग ऑटोमेटिकली मिलती थी कि देख एंडिंग किसी को मत बताना। 1997 गुप्त द हिडन ट्रूथ, बॉबी देओल, मनीषा कोइराला एंड काजोल। ओके, और अगर आपने गुप्त उस वक्त थिएटर में देखी थी ना, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, बिकॉज उस फिल्म को देखने का असली मजा था कि कौन है किलर। और 90s में सीक्रेट प्रोटेक्ट करने का सिस्टम भी कमाल का था, सो नो स्पॉइलर फिल्टर, नो म्यूटेड कीवर्ड्स, नो आई हैवंट वॉच्ड इट येट, डोंट टैग मी टाइप्स, बस फ्रेंड को आंखों में देखकर कसम से मत बताना। वो इरिटेटिंग जो एक दोस्त होता था ना कि अच्छा मैं नाम नहीं बताऊंगी, बस इतना समझ ले कि चुप, कुछ नहीं समझना मुझे, चुप हो जा। बिकॉज गुप्त का रिवील जेन्युइनली लैंडेड लाइक अ बॉम्ब। ठीक है, काजोल वो एक्ट्रेस जिसे ऑडियंसेस जो है रोमांटिक रोल्स में देख रही थी, सडनली इमर्जेस एज ईशा द किलर, एंड हियर्स वेयर द स्टोरी गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। काजोल जो है लेटर शी रिकॉल्ड दैट डायरेक्टर राजीव राय हिमसेल्फ वॉज नॉट श्योर वेदर शी वुड अग्री टू प्ले अ मर्डरर, सो ही रिपोर्टेडली वेंट इन टू अ रफली 2 hour नरेशन वेरी वेरी नर्वस अबाउट हर रिएक्शन, एंड काजोल का रिएक्शन वॉज शी लव्ड इट। शी लेटर रिमेंबर थिंकिंग एसेंशियली कि भाई आई हैव टू डू दिस फिल्म, and that risk created Filmfare history. For Gupt, Kajol became the first woman to win Filmfare's Best Villain Award. Officially, then was called the best actor in a villainous role. And Gupt also picked up Filmfare honors for Rajiv Rai's editing and Viju Shah's background score. It was crazy insane. And speaking of Viju Shah, that soundtrack, kaun sa? Duniya Haseeno Ka Mela, Mele Mein Ye Dil Akela Ek Dost Dhoond, and Mushkil Bada Din Mein मेरे खाबों में तू मेरी ओहो, इट हैड दैट यू नो अनमिस्टेकेबल स्लिक इलेक्ट्रॉनिक 90s थ्रिलर साउंड। बट व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट रिमेंबरिंग गुप्त टुडे इज नॉट द ट्विस्ट, इट्स रिमेंबरिंग हाउ वी एक्सपीरियंस ट्विस्ट्स बिफोर द इंटरनेट। द सीक्रेट कुड एक्चुअली ट्रैवल स्लोली एंड समवन कुड वॉच अ फ्राइडे शो, यू कुड गो ऑन अ संडे एंड सम हाउ एंटायर फैमिलीज एंड फ्रेंड सर्कल्स कोऑपरेटेड कि इसको मत बताना, इसने अभी नहीं देखी है। टुडे समटाइम्स द थंबनेल टेल्स यू द ट्विस्ट बिफोर इवन यू हैव प्रेस्ड प्ले। बैक देन यू बॉट द टिकट, सैट इन द डार्क हॉल एंड ट्रस्टेड द स्टोरी टू सरप्राइज यू, एंड गुप्त did exactly that. So 90s wallo, tell me you remember that moment when the truth finally came out and your brain went kajol. That wasn't just a movie reveal, that was 90s India collectively trying to keep one massive secret. Shh, gupt gupt.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: आई नो यू लव्ड गुप्त के बारे में जो मैंने अभी बात की, चलो एक और मूवी के बारे में बात करते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 अल्ट्रा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s बॉलीवुड फैशन की एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। आजकल जो है फिल्म अनाउंस होती है तो कैरेक्टर का लुक डिस्कस होता है, हेयर क्या होगा, मेकअप का क्या होगा, शूज, एक्सेसरीज, कलर पैलेट एंड एवरीथिंग। बट अर्ली 90s में दिस वॉज नॉट नेसेसरली द नॉर्मल प्रोसेस। कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम लार्जली कपड़े, या हेयर डिपार्टमेंट अलग, मेकअप अलग। और फिर 1993 में आई एक मूवी गुमराह, श्रीदेवी, संजय दत्त, राहुल रॉय, एंड बिहाइंड श्रीदेवी लुक वॉज अ यंग मनीष मल्होत्रा। सो मनीष मल्होत्रा हिमसेल्फ हैज कॉल्ड गुमराह हिज बिग अर्ली ब्रेक थ्रू एंड सेड इट वॉज अमंग द फर्स्ट फिल्म जहां पर ही वर्कड ऑन एन एक्ट्रेस कंप्लीट लुक इंक्लूडिंग हर हेयर। सो नाउ अगर आप जाके गुमराह मूवी देखे एंड श्रीदेवी जी का लुक देखे, उसमें skirts and jeans and waistcoats and that short cute bob, that hair was not incidental. Manish Malhotra jo hai unhone explain kiya that at the time there was a pretty rigid screen fashion idea. Modern ya western clothes meant short hair while Indian clothes were usually paired with long hair, often using wigs. So for Gumraha jo hai, he and Sridevi decided to actually go for the short haircut. And boss Sridevi ji agreeing to a cut, her hair mattered a lot. Imagine telling it in one of the, you know, India's biggest stars. Look के लिए बाल छोटे कर देते हैं. And today, look test होता है, mood board बनता है, reference pictures आती है. But we are talking about 1993. Manish, पक्का? कर दे? In fact, Manish Malhotra later recalled that when Sridevi ji first called him for Gumraha, he suggested that instead of simply doing clothes, they should work on the whole look, including keeping her hair short. So she liked the idea and he says that's how their long creative association really, really began. And this is what I love about 90s fashion nostalgia, ki hum audience ko terminology nahi pata thi. Styling, character continuity, complete look. Hum bas film dekhkar bolte the, yaar, Sridevi smart kitni lag rahi hai, usme kapde kitne acche pehne hain. And then next trip to the parlor, short karwa lo kya ekdam unke jaisa. Magazine mein unke photo nikli, friends ki discussion shuru ho gaye. Because Bollywood was not merely showing us clothes. It was quietly teaching an entire generation what a look could be. And Manish Malhotra has spoken about how unusual his approach initially was, asking for scripts and discussing the character and giving input beyond clothes into hair and makeup was not a standard practice and could even be seen as interference. Think about that. Before Rangila ya Raja Hindustani, before so many iconic 90s ke makeovers we remember, there was Sridevi ji in Gumraha, short bob, jeans, skirts, waistcoats, one character being styled head to toe. और हमें जब पता भी नहीं था कि स्क्रीन पर सिर्फ फैशन नहीं बदल रहा था, बॉलीवुड में फैशन बनाने का तरीका बदल रहा था।

0: सुल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: आई नो मैं फिर से थोड़ा सा इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, हो जाता है मेरे साथ। मस्ती 90s मिक्स टेप, आप सुन रहे हो रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ 90s वाली। 90s में किसी ने आपको एक कलरफुल सी डायरी पकड़ा कर बोला होगी प्लीज फिल माई स्लैम बुक ना, बस कैजुअल रिक्वेस्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं होती थी। दिस वॉज बेसिकली फ्रेंडशिप का जॉब इंटरव्यू। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन तो बड़े ईजी से होते थे, नेम ऑब्वियसली, निक नेम। यहाँ थोड़ा सा सोचना होता था कि घर वाला एम्बेरसिंग निक नेम तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आई नेवर रोट इट, आई विल नॉट टेल यू, सो डोंट इवन आस्क मी दैट। Okay, so then date of birth, then favorite color, favorite food, then Bollywood entered the form as well. Ki favorite actor kaun hai, favorite actress kaun hai, favorite song. Ab ek ho to bataye na, but then still kind of chota chota chota karke main kafi logo mein likhti thi because I had favorite Hindi songs as well as English songs as well at that point of time. So 90s mein itne gaane diye and ek line mein kaise ab usme jawab de. Then came your ambition in life and suddenly 13-year-old you had to submit a 5-year career plan. ठीक है, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, एक्टर, मैं तो सोचती थी कूल कौन सा लगेगा वही लिख देती हूँ। I want to be successful. Very safe answer. Define successful. Please don't ask follow-up questions. Yeah, right. But then slam book slowly became very dangerous. इसके बाद आते थे best friend. अब diplomacy यहाँ पे जो है शुरू होती थी because जिसने slam book दिया है उसका नाम नहीं लिखा तो इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाएंगे। दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्लैश लगा दो। तीन है, हैंडराइटिंग छोटी कर दो। एवरीबॉडी इंक्लूडेड, गवर्नमेंट कोलिशन फॉर्म्ड सक्सेसफुली एंड देन द क्वेश्चन केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्लासरूम्स। क्रश, मोस्टली आई नो एक्टर्स के नाम लेकर एकदम इधर उधर हो जाते थे एंड जिनको जो जो पता था वो तो सोचते थे कि नाइस ट्राई एंड काफ़ी आंसर्स ये भी आते थे कि नोबडी एंड देन समबडी रोट सीक्रेट एंड देन गेस ?" ये मेरा आंसर हुआ करता था स्लैम बुक में बिकॉज आई वॉज लाइक अब सोचते रहो, क्यूरियोसिटी तो तुम्हें हमने जगा दिया है, हमें खुद नहीं पता, क्योंकि कभी कभी ना दो से ज़्यादा भी क्रश हुआ करते थे। बट एनी वेज sophisticated classic ki that why should I tell you, theek hai, and everybody knew the more dramatically you wrote no one the more suspicious agla banda used to become and then came my favorite describe me in one word. One word? Friend ne puri diary di hai, ab uski personality ka annual appraisal bhi hum kare. You are sweet, cute, funny, caring and if you are really really close to that person to pagal hai, मतलब ये भी हम लिख चुके हैं। बट देयर वाज दिस वन क्वेश्चन वेयर सडनली सब सीरियस हो जाते थे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी नाउ, हियर यू पॉज, पेन जो है आपके हाथ में है बिकॉज दिस पेज इज गोइंग टू स्टे, सो वी रोट थिंग्स वी वुड प्रोबेबली नेवर actually say to each other, never change, you are a great friend, always keep smiling, stay the same and at the bottom keep in touch. That line hits differently now, है ना, doesn't it? Because some of those people, we didn't, I mean, no fight, कोई बड़ा goodbye नहीं, just school ended, college happened, cities changed, life happened. And somebody who once knew your favorite song, nickname, ambition and supposedly your crush, just slowly became someone you used to know. But somewhere, maybe in the old cupboard, there could be still a slam book holding that frozen version of you. Aapki handwriting, aapki terrible sketch, your 1990s ka favorite actor, your completely unrealistic ambition. And that sign off, friends forever. Koi cloud ka backup nahi hai, koi profile update nahi hai, koi edit ka button nahi hai, just ink on a paper saying this is who I was and these were my people. 90s social media profile, huh? Boss, we had one. It just had to be physically passed from desk to desk.

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak. जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
1: It's a Masti Partner event.
2: Prem, Nisha, Rahul, Anjali, Tina. In namo se apna par feel karne wale din. 90s nostalgia ka IV drip. Musty 90s next day.
3: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप में। मैं ना बहुत इमोशनल हो गई थोड़ी देर पहले जब स्लैम बुक की बात कर रहे थे रा। द मोमेंट आई सेड लाइफ हैपेंड, या इट काइंड ऑफ स्ट्रक टू मी दैट सच्ची में यार कितने सारे दोस्त जो हैं हम यूं ही ऐसे ही ख़त्म हो गया है ना। एंड अब जब अचानक से बहुत सालों बाद सोशल मीडिया पे किसी से बहुत टाइम के बाद ओ उस क्लास दिस क्लास दैट क्लास एंड द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, yeah, life really happened. But well, just like that, Masti 90s mixtape pe aaj ka time travel ka waqt jo hai yahan pe khatm karna padega hi padega, kitna bhi emotional ho jaye, but this is a nice kind of feeling which we are feeling at this moment, hai na. But चलिए एक चीज कर सकते हैं, आज के लिए दिमाग का कैलेंडर फिलहाल वापस लाते हैं 2026 पर। बट बिफोर यू गो, अपने यू नो 90s के किसी दोस्त को मैसेज करके इतना पूछ लेना कि तेरे पास वो स्लैम बुक अभी भी है क्या। यू नेवर नो, यू रियली रियली नेवर नो। आई हैव अ फीलिंग कॉन्वर्सेशन वहीं से कहीं और पहुंच जाएगी। मैं आंसर आपके साथ और ये था मस्ती 90s मिक्स टेप। पुराने ये 90s वाले गाने तो ऑफकोर्स बचते रहेंगे, पर उनके बीच जो आपको अपनी ये जो कहानियां छुपी हुई है ना, उन्हें भी कभी कभी प्ले करते रहना चाहिए। सो वेल, अगले एपिसोड में मुलाकात होती है, तब तक के लिए यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
3: It's a Masti Partner event.
4: गाना चाहिए? आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, All is well. आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस
5: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: नाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan.
1: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
2: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, अंधा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे। राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल। जोश में रहो।
3: 1, 2, 3, 4 Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। Musti Music Cafe.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
1: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पहले चलो।
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
5: रात अकेले है। जोश में रहो।
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: लिसन, मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: नो
0: यार, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: आई डोंट नो।
0: देख, अकेली लड़की, अनजान शहर,
2: कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम छे सिंगापुर सारू छे अग्गा सिंगापुर मारू छे कैसे आप सब बढ़िया ओ जी किदा चंगा हाँ जी तो आ जाइए एक बार फिर से लेजेंड्स का सफर तय करने आ गए हम। आइए आइए आपका इंतजार था। अच्छा मैं उनकी बात करूंगा आज जो अपने लेजेंड बनने की प्रक्रिया में जो कहानियां लिख रही हैं अपनी कहानियां बना रही हैं उनके किस्से सारी दुनिया में कहे जा रहे हैं और वो बहुत जल्द एक लेजेंड के तौर पर स्थापित हो जाएंगी। जी मैं आज बात कर रहा हूं 20 सालों से भी ज्यादा वक्त से सिनेमा के पर्दे पर जो अपनी अदाकारी के रंग भर रही है हम सबके भी कहीं ना कहीं फेवरेट है ही वो है ना और खूबसूरत है बेहद खूबसूरत है। नाम है उनका पू कपूर करीना कपूर। अपनी अदाओं बिंदास बोलों और एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी हमेशा से सुर्खियों में रहती हैं करीना कपूर। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जानेंगे उन्हें और ज्यादा करीब से। भाई हम तो उन्हें पलट पलट कर देखते हैं। ये है उनके हुस्न का जलवा सोशल मीडिया पर भी वो छाई रहती है हमेशा आप तो जानते ही हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के शो की। आगाज से आप समझ गए होंगे कि अंदाज कैसा रहने वाला है और अंजाम तक पहुंचते पहुंचते हम क्या हो जाएंगे। तो इस खूबसूरत सफर में हमारे हम सफर बनकर चलते रहिएगा हमारे साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव आपने ट्यून इन किया। याद रखिए ये सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009 और मैं हूँ समर आपके साथ। ले आज तो मैं अपना नाम बताने भूल गया। अब सुन लीजिए समर आपको वेलकम कर रहा है। हेलो आइए आइए गाने सुन लेते पहले।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हुस्न और अदाओं का एक बेहद खूबसूरत मेल लेकर मैं हाजिर हूँ। नाम है उनका करीना कपूर खान। जी हाँ, लेजेंड्स में आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं हूँ समर, आपके साथ रेडियो मस्ट 24/7 लाइव पर। देखिए, कभी खुशी कभी गम में पू का किरदार उन्हीं को देख कर रचा गया, लिखा गया। फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने उन्हें बॉम्बे टाइम्स की एक पार्टी में देखा था। करण जौहर वहां आए तो सभी की नजरें उन पर थी, जबकि करण करीना कपूर को ही देखे जा रहे थे। वो पोज दे रही थी जबकि उन पर किसी की नजर नहीं थी। ये देखकर करण जौहर को ख्याल आया कि इन्हें लेकर अब कोई रोल उन्हें लिखना होगा, लिखेंगे। उन्होंने पू का किरदार रचा और वो रचते हुए उनके मन में सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर ही थी। करीना कपूर ने इस रोल को इतने अच्छे से किया कि nobody can do better than that। हालांकि ये बात अलग है कि फिल्म रिलीज जिस दिन हुई वो लंदन में थी, पूरा फिल्म का क्रू वहां था और वो डर के मारे बाथरूम में घुस गई। और क्या आप यकीन करेंगे, कितनी देर लगती किसी को बाथरूम में, वो पूरे 3 घंटे तक बाथरूम के अंदर ही बंद रही। बहुत नर्वस थी, सारे लोग थक गए उन्हें बुला बुला कर, बाहर आओ, नहीं आई बाहर। फिल्म के जब नतीजे सामने आने लगे तब उनकी बहन लोलो, शाहरुख खान, उनकी मम्मी बबीता जी, करण जौहर, सभी ने उन्हें बाहर बुलाया कि उनके किरदार पर लोग सीटियां बजा रहे हैं, अब तो बाहर आओ। तब जाकर वो बाहर निकली। खैर, ये तो रिलीज के बाद की बात है, लेकिन रिलीज के बाद की और भी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो घर में भी ना पू का किरदार ओढ़े घूमने लग गई थी। कांच के सामने खड़े रहना, स्टाइल मारना, वही एक्सेंट। माँ इतनी दुखी हो गई थी, उनको कहने लगे कि भाई अब तो किरदार से बाहर निकलो, मेरी बेबो बन जाओ फिर से। पर ऐसा नहीं है कि पू उनके अंदर फिल्म करने के बाद आई, वो पैदा होने के बाद से उस किरदार में थी। होते भी क्यों नहीं, ग्रेट शोमैन ऑफ इंडिया राज कपूर साहब उनके दादाजी थे। हम करीना कपूर साहिबा के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद कहानी जारी रहेगी। आप भी कुछ कहना चाहते हमारे फेसबुक पेज पर आकर बिंदास कहिए हमसे, हमें सुनना अच्छा लगेगा।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप मुझे सुन रहे हैं। और आज लेजेंड्स के सफर में मेरे साथ हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही ग्लैमरस एक्ट्रेस करीना कपूर, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। कॉफी भी सिप कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि टी इज फॉर वर्क एंड कॉफी इज फॉर लव। देखिए, आपके साथ बातें करना, गपियाना, ये मेरा काम नहीं है, मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरा पैशन है, तो कॉफी तो बनती है ना साथ में। अच्छा, राज कपूर साहब, दादाजी, चाचा और ताऊ जी सभी एक्टर्स, दादाजी के भाई भी एक्टर्स, परदादाजी भी एक्टर, माँ, चाची, यानी जिस फैमिली में सभी कलाकार हों, वहाँ अगर कोई पैदा हो तो एक्टिंग तो जीन में आ ही जाएगा, आना पड़ेगा उसको। करीना कपूर की बड़ी बहन में आया तो उनके भीतर आना ही था। हमें नहीं पता कि करिश्मा कपूर में एक्ट्रेस बनने का ख्याल कब आया था, पर करीना कपूर का बचपन से यही ख्वाब था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है, बॉलीवुड हीरोइन बनना है। और उनकी इस इच्छा का किसी ने विरोध नहीं किया। वो बचपन से अपने दादाजी को भी कह देती थी कि वो हीरोइन बनना चाहती हैं। उन्होंने भी उन्हें कभी नहीं रोका। ये बात अलग है कि करीना कपूर कहती हैं कि उनके दादाजी उनसे ज्यादा उनकी बहन करिश्मा को चाहते थे। बचपन में ऐसा होता है ना, हमें लगता है ना कि हमसे ज्यादा तो दूसरों को प्यार करते हो आप बड़े लोग। लेकिन वो उनके घर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर साहब की बड़ी बेटी थी, इसलिए शायद ज्यादा प्यारी हो भी सकती हैं, इसमें कोई शक की बात है नहीं। मतलब ऐसा हो जाता है, पहला बच्चा जो होता है वो ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन छोटा बच्चा भी बहुत प्यारा होता है। ये यूं कहें कि बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं। चलिए हम करीना कपूर की बात पर आ जाते हैं। वेल, एक किस्सा याद आ रहा है, सुना है करीना कपूर जी के मुंह से ही कि राज कपूर साहब को बहुत सारी नस्लों के आमों से लगाव था, आम, मैंगोज। वो अपने कमरे में आम रखते थे और उस कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं देते थे, मतलब आम उनके कमरे में होते थे। वो आम खाने की इजाजत केवल करिश्मा कपूर को ही मिली हुई थी। जब करीना छोटी थी तब वो राज कपूर साहब के आम वाले कमरे से आम चुराने की कोशिश भी करती थी, लेकिन राज कपूर साहब आम को बचाकर किसी अलमारी में रखकर ताला लगा देते थे और चाबी खुद रख लेते थे। लेकिन वो करिश्मा को हमेशा आम दिया करते थे, क्योंकि करिश्मा उनकी फेवरेट पोती थी, बकौल करीना कपूर। वेल, करिश्मा कपूर राज कपूर साहब की फेवरेट होने के साथ साथ अपनी बहन की बहुत फेवरेट है, यानी करीना कपूर उनको बहुत पसंद करती है। वो कहती है कि करिश्मा इज इन मी। हालांकि करिश्मा ने बड़ी बहन होने का रोल बखूबी निभाया है, वो उनकी बहुत केयर करती हैं बचपन से ही। तो चलिए दोनों की बॉन्डिंग पर और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। क्या कहते हैं आप, सुनते रहिए लेजेंड्स अपने समर के साथ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल। मैं हूं आपका हमराही समर, और आज के इस खूबसूरत सफर पर हमारे साथ हैं बेबो उर्फ करीना कपूर खान, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल करीना कपूर खान, यानी कि के। हम बात करने वाले थे करीना कपूर और करिश्मा कपूर की बॉन्डिंग के बारे में। करिश्मा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपनी बहन का होमवर्क करने में उसकी मदद किया करती थी, और अगर उन्हें लगता कि करीना पढ़ाई नहीं कर रही हैं, तो उनको डांट भी लगाती थी और जबरदस्ती पढ़ने बिठाती थी। उनकी शिकायत मम्मी पापा से कर देती थी यानी बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज निभाती थी। इधर करीना कपूर मौका मिलते ही माँ का मेकअप लगा लेती और उनकी नाइटी पहन के कांच के सामने मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी जी बन जाती और गाने लगती, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, डांस शुरू कर देती उस पर। और तो और माधुरी दीक्षित जी के गानों पर नाचती, और माँ देखती तो समझ जाती कि उनकी बेटी किस दिशा में जा रही है। उधर जब करिश्मा कपूर ने फिल्मों में कदम रखा तो वो उनके साथ हरदम सेट पर जाया करती थी। एक दफा चेन्नई के KVM स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी, करिश्मा जी ने ब्लू साड़ी पहन रखी थी। सीन के बाद करिश्मा ने साड़ी बदल ली, उस साड़ी को करीना ने पहन लिया। बबीता जी उन्हें देखती रह गईं। उन्होंने सेट पर मौजूद स्टिल कैमरामैन से कहा कि वो फोटो लें करीना की साड़ी में। अच्छा, माँ और बहन तो समझ ही चुके थे कि दूसरी कलाकार तैयार हो रही है, लोग भी उन्हें नोटिस कर रहे थे, बहन ने उन्हें सपोर्ट भी किया, ये तो हम सब जानते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अपनी बहन की सबसे अंतरंग मित्र रही करीना कपूर। जीवन के हर मोड़ पर दोनों साथ रही हैं, हर मुसीबत का एक साथ मुकाबला किया है, और हर एक खुशी को भी दोनों ने साथ में सेलिब्रेट किया है। करिश्मा कपूर जी ने जब एक्ट्रेस बनने की सोची तो किसी ने उनकी फैमिली से सपोर्ट नहीं किया था। उन्हें अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उनकी स्ट्रगल जर्नी में उनके साथ हमेशा जो रही वो करीना कपूर थी, और इन दोनों के साथ हमेशा जो रही वो बबीता कपूर थी, इनकी माँ। आइए इस बारे में और भी बातें करेंगे, इनके बारे में, इस खूबसूरत परिवार के बारे में, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ समर और ये है मेरा मस्ती का परिवार, जिसमें आप सब लोग आते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर क्यों नहीं चले आते हैं? आइए ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, और ये गाने भी आपका इंतजार कर रहा है, ये इन्हें सुन लेते हैं।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
8: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
9: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, दोनों बाहें फैलाकर। मैं हूँ समर, रेडियो 24/7 लाइव पर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में लेकर आया हूँ करीना कपूर की। करीना कपूर से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि वो श्रीदेवी की इतनी बड़ी फैन है, उनकी माँ भी एक्ट्रेस थी, तो क्या वो उनकी आइडल है? इस पर करीना कपूर हंसकर कहती है, नहीं वो एक अलग टाइप की है, लेकिन श्रीदेवी की बात ही अलग है। लेकिन माँ को करीना कपूर वंडर वुमन कहती हैं। रणधीर कपूर से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की। हालांकि दोनों का डिवोर्स कभी नहीं हुआ, पर दोनों ने अलग अलग रहकर भी अपने बच्चों को ठीक से पाला पोसा। बबीता कपूर जी और रणधीर कपूर साहब की शादी हुई थी साल 1971 में, 1971 में लव मैरिज की थी दोनों ने, लेकिन साल 1988 में दोनों सेपरेट हो गए, पर दोनों ने दोस्त और अपने बच्चों का पेरेंट बने रहने की ठान ली थी। रणधीर कपूर साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी वाइफ को कुछ आदतें अच्छी नहीं लग रही थी उनकी, जिस वजह से उन्होंने अलग रहने का सोचा, जैसे घर देर से आना और ड्रिंक करना। अब न रणधीर कपूर साहब बदलना चाहते थे और ना ही बबीता जी उनके साथ ऐसे में रह सकती थी, तो दोनों ने अलग होना बेहतर समझा। अच्छा, उनकी समझदारी का असर दोनों बहनों पर भी पड़ा। झगड़ते और टूटते हुए परिवार से बेहतर होता है उसका छोटा मगर पीसफुल होना। तीनों औरतों ने अपनी जिंदगी की राह खुद तय की। करीना कपूर कहती हैं कि उनको पेरेंट्स के डिसीजंस बहुत ही अच्छे लगे बड़े होने पर, क्योंकि जब दो लोगों को लगे कि उनका रिश्ता उस दिशा में नहीं जा रहा जैसा उन्होंने सोचा था, तो साथ रहने से कोई फायदा नहीं बिना बात के, और ज्यादा खटास है उससे अच्छा है थोड़ा दूर हो जाएं। बचपन से ही उन्हें और उनकी बहन को ये बात समझ आ गई थी। अलग रहने के बावजूद जब भी जरूरत होती उनके माँ बाप हमेशा एक दूसरे के साथ होते, फैमिली के साथ होते। देखा जाए तो उनके शुरुआती दिन बचपन से लेकर आगे तक एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड था उनके लिए। वो सीखती रही जिंदगी से और एक्टिंग भी उसी का एक पार्ट रही। बहन को फिल्मों में एक्टिंग करते देखना, उसके जैसे एक्ट करना, यही सब। अच्छा, इस बीच उन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वो भी सरकारी कॉलेज में। और उन्होंने ये क्यों किया, फिल्म और ग्लैमर से एकदम अलग, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। सुनते रहिए समर के साथ रेडियो 24/7 लाइव पर लेजेंड्स करीना कपूर की कहानी मेरी जुबानी।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक। बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप मेरे साथ सुन रहे हैं करीना कपूर खान की अभी तक की जिंदगी का सफरनामा। कपूर फैमिली में जन्मी करीना कपूर खान का सपना भी वही था कि वो फिल्मी परिवार की तरह फिल्मी बन जाए, मगर जब उन्हें कोई कहता कि तुम्हारी फैमिली में तो कोई पढ़ा नहीं है, इस पर उन्हें बहुत बुरा लगता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो पढ़ेंगी और खूब पढ़ेंगी, और जहां जाती वहां उन्हें सब बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देते। तुम तो कपूर फैमिली में जन्मी हो, क्या कमी है, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगा वो साधारण लोगों के कॉलेज में पढ़ेंगी। बिन किसी को बताए सरकारी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया उन्होंने। कॉलेज में पढ़ने गई तो वहां महसूस हुआ कि यहाँ तो बहुत मारामारी है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। बस ये सोचकर वो वापस आ गई थोड़े दिन पढ़ाकर। लेकिन यही नहीं, उन्होंने आगे सोचा कि अब पढ़ाई करने वो हार्वर्ड जाएंगी, और वो उन्होंने कर भी दिखाया। हार्वर्ड जाने का सपना किसी का यूं ही कामयाब नहीं हो जाता, आप भी जानते हैं, लोग ख्वाब देखते रह जाते हैं ताउम्र। पर उन्होंने कर दिखाया, टेस्ट क्लियर किया, एडमिशन लिया और माइक्रो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कोर्स किया। ये बात अलग है कि आज वो कंप्यूटर को हाथ तक नहीं लगाती। एक साल का कोर्स था, लेकिन ये कपूर फैमिली के लिए इतनी बड़ी बात थी कि कोई हार्वर्ड में पढ़ने गया। ऋषि कपूर साहब उनसे मिलने गए, उनके पापा रणधीर कपूर उनसे मिलने गए, करिश्मा कपूर उनसे मिलने गई। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था सभी के लिए, क्योंकि लोग यही कहते थे कि कपूर गर्ल विद नो ब्रेन गोइंग टू हार्वर्ड। खैर, हार्वर्ड से आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया आगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, बल्कि सिनेमा के पर्दे पर आने की अपनी ख्वाहिश पूरी की। फिल्म कहो ना प्यार है का ऑफर भी उन्हें मिला, वो करना भी चाहती थी, शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन किसी वजह से वो ये फिल्म नहीं कर पाई, क्योंकि इंडस्ट्री में उनकी एंट्री ऋतिक रोशन के ऑपोजिट नहीं बल्कि अमित जी के बेटे के साथ जो होनी थी। आइए एक ब्रेक के बाद जानेंगे उनकी फिल्मोग्राफी, उन्होंने कौन कौन सी फिल्में की, कब कब की और कुछ और किस्से। आप हैं समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, करीना कपूर स्पेशल लेजेंड सुन रहे हैं आज, सुनते रहिए है।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रशेबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: क्रशेबल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
2: आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं समर और आप सुन रहे हैं मेरे साथ करीना कपूर की दास्तान। बॉलीवुड की खूबसूरत और बिंदास अभिनेत्री जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखा करीना कपूर खान ने। एक दिन गुजर गया, रात भर शूटिंग चलती रही और उनका शॉट आया सुबह 4 बजे। जैसे ही जेपी दत्ता साहब ने कहा करीना का शॉट लगा, तो करीना कपूर सोचने लगी कि वो पहला शॉट है, वो इतनी थकी हुई हैं, इस वक्त सोई नहीं है, कैसे करेंगी। जेपी दत्ता साहब ने कहा नहीं, तुम कर सकती हो, क्या दिक्कत है। करीना कपूर ने आईना देखकर अपने आप से कहा यस मैं कर सकती हूँ और ये अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन है मेरा, यानी फिल्मों में आने का फैसला। बस फिर क्या था, पहला शॉट ले लिया गया। ये फिल्म चली नहीं मगर उनके अभिनय को सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये जो मेरी शुद्ध हिंदी है इसे समझते हैं आप जी, बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट। वेल इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, कुछ फिल्में चली लेकिन कुछ बुरी तरह पिट गईं। फिल्म चमेली में उनका किरदार करियर का टर्निंग पॉइंट बना। फिल्म जब वी मेट में निभाए गए उनके किरदार को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और मैं सबसे बड़ा फैन उनका इसी फिल्म को देखने के बाद बना। कमाल की एक्टिंग, कमाल की टाइमिंग, जबरदस्त गीत से प्यार हो गया था उसके बाद मुझे। अगर मैं उनकी फिल्मों के नाम बताऊं आपको जो उन्होंने की और काफी चली, खास रही, चर्चा में रही, तो उनमें 2004 तक करीना की देखे काफी फिल्में आ चुकी थीं, कुछ हिट थीं तो कुछ बेहद फ्लॉप, लेकिन चमेली मूवी अलग ही विषय पर थी। करीना ने इस तरह का चैलेंजिंग रोल पहले कभी नहीं किया था लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने फिल्म साइन की और उनकी कोशिश कामयाब हुई। फिल्म के लिए करीना को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। देव, अमिताभ बच्चन और फरदीन खान के साथ उनकी ये फिल्म हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन और ओमपुरी जैसे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार थे लेकिन करीना अपने अभिनय के बूते पर उपस्थिति दर्ज करवाती हैं इस फिल्म में। फिल्म के लिए करीना ने फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता था। एक और फिल्म है एतराज। इस फिल्म में करीना कपूर के साथ अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा भी थे। फिल्म में प्रियंका का रोल निगेटिव था और ग्लैमरस था जबकि करीना की भूमिका सादगीपूर्ण थी, लेकिन करीना कहीं भी कम नहीं पड़ी है। प्रियंका चोपड़ा से याद आया कि करीना कपूर का उनसे झगड़ा भी हुआ था जिसकी चर्चा बॉलीवुड में हमेशा होती है। क्या आप जानना चाहते हैं क्या था ये झगड़ा? एक ब्रेक के बाद जानेंगे, उनकी बाकी फिल्मों की भी बात करेंगे। आप सुन रहे हैं समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स, करीना कपूर स्पेशल।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। और मुझे मालूम है कि आपने कान सटा रखे हैं रेडियो मस्ती से, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ एक झगड़े का किस्सा। करीना कपूर स्पेशल लेजेंड्स लेकर मैं हाजिर हूँ। और ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था प्रियंका और करीना के झगड़े की। देखिए, बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स के बीच भी छोटी छोटी बातों पर अक्सर मनमुटाव हो जाता है। वहीं फिल्म के सेट से तो ऐसी खबरें आती रहती हैं कि दो हीरोइनों के बीच कैट फाइट हो गई। ऐसे एक किस्सा है प्रियंका और करीना का। एक दौर था जब करीना और प्रियंका दोनों ही सक्सेस की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ रही थी। दोनों फिल्म डॉन में भी साथ दिखाई दी थी। फिल्म डॉन के सेट पर ही इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। जी, शाहरुख खान वाली डॉन। करीना कपूर ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि उनकी इंडस्ट्री में कंपटीशन रानी मुखर्जी से है बस। इसके बाद उनसे पूछा गया कि अपने साथ की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को आप अपना कंपटीशन नहीं मानती, तो इस पर उनका कमेंट आया, ओह मुझे लगा कि आप एक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये बात प्रियंका चोपड़ा के दिल को बहुत चुभ गई। करीना और प्रियंका का एक किस्सा और है जब दोनों की जुबानी जंग छिड़ गई थी। एक चैट शो पर एक बार करीना ने प्रियंका के एक्सेंट को लेकर टॉन्ट कस दिया था। करीना का कहना था कि प्रियंका फेक एक्सेंट के साथ बात करती हैं। ऐसे में उन्होंने सवाल भी किया था कि वो कहां से ये सीख कर आई हैं। प्रियंका ने करारा जवाब दिया और कहा कि जहां से उनके हस्बैंड सैफ ने सीखा है वहीं से। वेल, चलता रहता है ये सब इंडस्ट्री में, नहीं? अच्छा, करीना कपूर की सिग्निफिकेंट फिल्मों की बात करें तो उनमें से एक है ओमकारा, विलियम शेक्सपियर की ओथेलो पर आधारित ये फिल्म। हीरोइन के तौर पर करीना का काम काबिल-ए-तारीफ था। जब वी मेट से तो सभी परिचित हैं। 2007 में आई इस फिल्म में उनके गीत ढिल्लों वाले किरदार ने उनके फैंस पर सबसे ज्यादा छाप छोड़ी है। इस फिल्म के लिए करीना कपूर खान को कई अवार्ड समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। जब वी मेट की सक्सेस के बाद करीना की कई फिल्में आईं और उनके सैफ अली खान के साथ रिलेशनशिप की खबरें भी परवान पर थीं। फिर आई मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन। प्यार, निराशा और उम्मीद की इस कहानी में हीरोइन का किरदार बड़ा बोल्ड था। करीना को इस रोल के लिए पहले अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। इसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन से इसकी शूटिंग शुरू की गई, लेकिन वो मां बनने वाली थी, जिसके बाद फिर से करीना को ऑफर दिया गया और इस बार वो राजी हो गई। फिल्म तमाम कारणों से असफल रही, लेकिन करीना का अभिनय यादगार रहा। हो सकता है आपकी पसंदीदा फिल्मों में कोई और हो। आप फेसबुक पर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के फेसबुक पर मुझे आकर बताइए करीना कपूर की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप ये गाने भी इंतजार कर रहे हैं, सुन लेते आइए और वापस जरूर आएगा। समर के साथ हैं आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सुन रहे हैं लेजेंड्स, करीना कपूर स्पेशल।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है, वेलकम बैक। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अपने समर के साथ। आज हम बात कर रहे हैं करीना कपूर खान की, और हमने करीना कपूर खान की फिल्मोग्राफी तय की, उनकी फिल्मों के बारे में जाना। लेकिन करीना कपूर जिस नाम के बिना अधूरी हैं, वो है सैफ अली खान, उनके हस्बैंड। सैफ अली खान और करीना कपूर खान बी टाउन के रॉयल कपल कहे जाते हैं। सैफीना के नाम से मशहूर ये जोड़ी जिस तरह प्यार और समझ के साथ अपने रिश्ते को मजबूती से संभाले हुए है, वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लव और लिव इन के फेज से गुजरने के बाद रिलेशनशिप को शादी के मुकाम तक पहुंचाने के लिए सैफ को करीना की एक शर्त माननी पड़ी थी, और शर्त ये थी कि करीना एक वर्किंग वुमन है और खुद पैसे कमाती हैं, और वो ऐसा जिंदगी भर करती रहेंगी और सैफ को इसमें पूरा सपोर्ट देना होगा। करीना की शर्त को सैफ ने सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। शादी से पहले दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। 2007 के आसपास शाहिद कपूर से ब्रेकअप होने के बाद करीना कपूर की नजदीकियां सैफ अली खान के साथ बढ़नी शुरू हो गई थी। फिल्म ओमकारा के बहुत कम सीन सैफ और करीना को एक साथ शूट करने थे। सेट पर दोनों साथ साथ दिखते थे। जब करीना या सैफ के सीन भी साथ में न होते तो भी सेट पर साथ बने रहते। ओमकारा के बाद सैफ करीना की नजदीकी यशराज बैनर की फिल्म टशन की शूटिंग के समय भी दिखी। शूटिंग से वक्त निकाल कर ये दोनों लॉन्ग वॉक पर जाते। इन दोनों के अफेयर के गॉसिप्स बनने शुरू हो गए थे, पर मीडिया के सामने दोनों ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में इन लोगों ने शादी कर ली। करीना कपूर कहती हैं कि सैफ के परिवार को जब उन्होंने जाना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो लोग पढ़ते रहते हैं, सारे के सारे स्कॉलर्स हैं। ऊपर से उनकी फैमिली में पढ़ने लिखने का कोई माहौल ही नहीं था। खैर, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि करीना कपूर भी हार्वर्ड रिटर्न थी। अच्छा, यही नहीं, सैफ अली खान साहब की पहली वाइफ अमृता सिंह के साथ उनके कैसे भी रिलेशन हो, उनकी बेटी सारा अली खान के साथ वो बहुत नॉर्मल है। करीना ने उन्हें कभी छोटी माँ बुलाने के लिए भी नहीं कहा, और करीना ये भी नहीं चाहती कि सारा उन्हें आंटी कहें। सारा के साथ ही दोस्त बनकर रहती हैं, और सारा उन्हें माँ नहीं बल्कि करीना कहकर बुलाती हैं। है ना एकदम कमाल? आई लाइक इट, एकदम सुलझा हुआ, सॉर्टेड। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपसे मिलेंगे, आज की आखिरी मुलाकात करेंगे और बहुत सारी और बात करेंगे। समर के साथ हैं आप, रेडियो मंजरी 24/7 लाइव पर सुनते रहिए लेजेंड्स।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the desi way.

0: बाय।
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: वेलकम बैक। करीना कपूर खान की आज हम बात कर रहे हैं अपने शो में रेडियो मसी 24/7 लाइव, पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स समर के साथ। जी वही करीना जो कहती हैं constantly try to look good is an art. सच भी है, she always looks stunning. अपने कपड़ों को लेकर, अपने फैशन को लेकर मीडिया में लाइमलाइट में रहती हैं वो। अभी नवाब फैमिली की बहू बनने के बाद तो और भी उनके चर्चे हैं। शर्मिला जी के साथ उनका रिश्ता बेहतरीन है क्योंकि शर्मिला जी खुद अपने जमाने की काफी बोल्ड एक्ट्रेस रही हैं। एन इवनिंग इन पेरिस में उन्होंने बिकनी पहनकर सबको हैरत में डाल दिया था, लिहाजा करीना कपूर को भी सब कुछ करने की इजाजत है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है फिल्म अनाड़ी से। फिल्म में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, आई नो, पर जहाँ जहाँ करिश्मा कपूर वहाँ वहाँ करीना, ये तो मैंने आपको बताया था, वो सेट पर जाया करती थी। तो सेट पर एक दिन ऐसा दृश्य था कि छोटी सी करीना कपूर जर्नलिस्ट से घिरी बैठी थी। सभी लोगों ने सोचा एक्ट्रेस की बहन है, हो सकता है उनका इंटरव्यू कर रहे हो पत्रकार। मगर जब करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ बेबो उन सबसे सवाल पूछ रही थी, एक साथ सभी पत्रकारों से। ऐसी है वो बचपन से ही, हमेशा लाइमलाइट और चकाचौंध में रहने वाली, चाहे वो प्रेगनेंसी से लेकर अपने दोनों बच्चों के जन्म और उनके नाम को लेकर ही रही हो। उनके दो बच्चे तैमूर और जहांगीर, तैमूर पर तो पूरा का पूरा मीडिया फिदा है, मैं क्या कहूँ। ये परिवार यूं ही खुश रहे, खुशहाल रहे, करीना यूं ही हमें बेहतर से बेहतरीन काम करके देती रहे और कपूर खानदान की इस लेगेसी को वो आगे बढ़ाए। रेडियो मसी 24/7 लाइव की ओर से हम दुआ करते हैं कि करीना कपूर और खूबसूरत दिखती रहें और कई और ज्यादा किरदार जिए जिन्हें वो हमारे लिए पर्दे पर यादगार बनाती रहें। चलिए अभी तो मैं जाता हूँ, इजाजत चाहूंगा आपकी, फिर किसी शख्सियत को लेजेंड्स में लेकर आऊंगा, बहुत जल्द आपसे मिल पाऊंगा। लेकिन जाने से पहले कर दीजिए वही वादे, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें, याद मुझे भी रखेंगे अपनी दुआ में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: You don't have to have everything figured out to move forward. I really like this line. क्योंकि हम लाइफ में कितनी बार वेट करते हैं ना फॉर दैट मैजिकल मोमेंट व्हेन सडनली एवरीथिंग विल मेक सेंस। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डियर मस्ती दिल से। मैं हूँ आपकी अंतरा, यहाँ पर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और धीरे धीरे यहाँ पर हमारी नुपुर और हमारे संघर्ष साथी श्रीधर भी जुड़ते हुए जाएंगे और आप भी, आपकी चिट्ठियां भी हमारे साथ जुड़ते हुए जाएंगी। बस यही बात को लेकर मैं सोच रही थी कि कितनी बार हम सोचते हैं कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, बस समझ आ जाए कि राइट डिसीजन क्या है, बस यही कंफ्यूजन खत्म हो जाए एंड देन आई विल नो व्हाट टू डू। एक्सेप्ट लाइफ रेयरली गिव्स अस दैट लक्जरी। कभी डिसीजंस पहले लेना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है, कभी बाउंड्री पहले रखनी पड़ती है, गिल्ट बाद में आ जाता है, कभी किसी रिलेशनशिप से थोड़ा पीछे हटना पड़ता है विदाउट नोइंग वेदर यू आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट, एंड समटाइम्स दो ऑपोजिट फीलिंग्स एक साथ बिल्कुल सच हो सकती है। यू कैन लव समबडी एंड बी डिसअपॉइंटेड इन देम एज वेल, यू कैन बी हैप्पी फॉर अ फ्रेंड एंड स्टिल फील जेलस, यू कैन वॉन्ट टू हेल्प समवन and still want to say no. You can have a good life and still have something bothering you. Human emotions don't always arrive neatly labeled. Ki hello, main insecurity hoon. Reason number 3 ki wajah se main aayi hoon. Kaash aisa hota nahi. Most of the time we just know something doesn't feel right, but I don't completely understand why am I feeling like that. And that's where conversations help. डियर मस्ती दिल से पर यही हमारी कोशिश है। ये वो स्पेस है जहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स को परफेक्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंडशिप्स, वर्क, गिल्ट, जेलसी, बाउंड्रीज या कोई सीमिंगली छोटी सी बात आपके दिमाग से जा नहीं रही, राइट टू अस, नो जजमेंट, नो नेम्स। हमारे लिए आप सिंपली डियर लिसनर और आपके लिए हम डियर मस्ती। व्हाट्सएप 9151896 3। आज भी कुछ लेटर्स खोलेंगे, कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। आंसर्स हर बार शायद परफेक्ट ना मिले, बट आर वी लुकिंग फॉर दैट? वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ फ्रेश POV। सो वेल, चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत से म्यूजिकल ब्रेक के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वो लोग जो दिल की बात जुबां पर ले आते हैं ना, ऐसे लोगों को कभी खोना नहीं चाहिए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड डेफिनेटली दिल की बातें जुबां तक आए ना आए, लेकिन हमारे पास आपके लेटर के थ्रू जरूर आ जाती है। एवरी ट्यूसडे 5 PM ऑनवर्ड्स हम सभी आरजेस अनोनिमस वे से आपके लेटर्स पढ़ते हैं और आप तक जवाब भेजते हैं। खैर, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है डियर मस्ती दिल से, मुझे जो मेरा पार्टनर मिला है ही इज वेरी वेरी वेरी गुड, लेकिन वो कहते हैं ना चांद में भी दाग होता है, तो मेरे पार्टनर में ये दाग है कि वो बिना बताए मुझसे मतलब नाराज हो जाता है और थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगने लगती है, तो मैं और ज्यादा सवाल पूछने लगती हूँ और हमारी लड़ाइयां बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट सा है, वो कुछ चीजें पजल की तरह इनके रिश्ते में सॉल्व करना रह गई है। बाय द वे, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? 9151 8963 पे टेक्स्ट करके बताना। आप तो अपना जवाब बता देंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट का जवाब है अगला गाना।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome again to Dear Masti Dil Se. This is your Sangharsh Sati Sridhar and happy to be back again with the lovely Antra. And I want to hand over the baton as quickly as possible to Antra. कि मेरा English is not that good. पर इससे भी और डरावना बात यह है कि शादी के बारे में तो I had a very interesting topic that I want to come into in this episode. Antra, to you before I go into the topic in detail.
2: Yes, ये है डियर मस्ती दिल से, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ अलोंग विद संघर्ष साथी श्रीधर। नाउ ऑलरेडी ही हैज टीज्ड द टॉपिक एंड आई नो अ लॉट ऑफ अस वुड बी इंटरेस्टेड टू नो दैट ये क्या केस है जो शादी से रिलेटेड है। श्रीधर, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट।
1: वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बंदा जो है कॉल किया एंड बोला कि आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ मैरिज। मैंने बोला भाई मैरिज हुआ है कि होने वाला है? से नहीं, होने वाला है, आई एम स्कैर्ड। बोला यार शादी के बाद भी आई एम स्कैर्ड, तो व्हाई आर यू वरीड? इट वाज वेरी डिफरेंट। फिर ही सेड नहीं, उसकी दो तीन बार शादी कैंसिल हुई थी, मतलब एंगेजमेंट के बाद ही कैंसिल द वेडिंग। एंड आई हैड आस्क्ड हिम क्यों, प्रॉब्लम क्या था एंड what was the reason he cancelled, is it the family was not good? He said nahi nahi, un sab mein problem hi nahi hai, problem mere mein hai, main shaadi se bahut dalta hu. So and to the point he about half a kilometer before he went to their house, he would stop the car and he would go back. To the point he had palpitations, wo you know driving karte waqt his hands were shaking. So I was like yaar shaadi, पता नहीं किससे शादी कर रहा है। But that was, that's where the topic stopped. And it was very unique, very interesting for me. But someone's problem is a problem, right? Especially if it affects the day-to-day work. So that's where it was interesting conversation. I'd like to share more what we did. Because there's no custom solution for this.
2: And that is so very true. Like when we talk about marriage, and this is like getting that cold feet, jab ekdam uske bahut paas aa jate, and then you think ki I don't know whether this is the right thing to do. और ये उस तरह के सवाल है श्रीधर, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में आते हैं, but they are not very open asking it. Because उनको ये लगता है कि अगर मैं बोलूंगा they will judge me. So I am really keen to find out that क्या आप लोगों ने suggest किया उसको, what perspective did you give, how to deal with this last minute emotion and anxiety जो वो feel कर रहा है. So let us come back on Dear Masti Dil Se, जहां पर कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई judgment नहीं है. We are just here to talk about these feelings which usually people are like नहीं यार रहने देते हैं, नहीं ही पूछते हैं. या सो स्टे ट्यून्ड।

0: close to me? Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
2: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak. जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
3: It's a Masti Partner event.
4: Raaz ki baat batau, meri awaaz kabhi achhi thi hi nahi.
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, चलते चलते वापस से अब आपकी यात्रा की बारी यहाँ पर आ चुकी है। अगली चिट्ठी में एक फ्रेंडशिप है जो टेक्निकली क्लोज लगती है, बिकॉज दिस फ्रेंड शेयर्स एवरीथिंग, प्रॉब्लम्स, फाइट्स, फ्रस्ट्रेशंस, बैड डेज, बट हमारे लिसनर ने जो है वो रियलाइज किया है एवरीथिंग में शायद गुड थिंग्स इंक्लूडेड ही नहीं है। तो आई साथ में पढ़ते हैं। डियर मस्ती, I have a friend who calls me whenever she's upset, fighting with her husband or having problems at work. I listen for hours and I'm genuinely there for her. But when something good happens in her life, I usually find out through Instagram ya phir kisi aur se. Recently she got some wonderful news and I wasn't even one of the people she told. It made me wonder, am I her friend or have I just become her safe space for the problems? Is it fair to feel hurt when someone trusts you with their pain but not with their happiness? So my dear listener, see, I understand why this hurts, because ajeeb si baat hai na, usually hum sochte hain kisi ka apna hona means they trust us with the difficult moments, and clearly your friend does. Jab fight hoti hai she calls you, work problems she calls you, she's upset, she's आपके पास आती है, सो समवेयर यू प्रोबेबली थॉट दैट आई एम वन ऑफ हर पीपल, एंड देन समथिंग वंडरफुल हैपेंस, और आपको पता चलता है इंस्टाग्राम से। सडनली सवाल सिर्फ उसने मुझे बताया क्यों नहीं, दैट इज द वन राइट, इट बिकम्स मैं एक्चुअली उसकी लाइफ में हूँ कहाँ, एंड आई थिंक दैट्स द इमोशन अंडरनीथ दिस लेटर। इट्स नॉट रियली अबाउट वॉन्टिंग टू बी द फर्स्ट पर्सन टू हियर एवरी पीस ऑफ गुड न्यूज, राइट? इट्स अबाउट वंडरिंग व्हाई यू सीम टू हैव अ फ्रंट रो सीट टू समवन्स पेन, बट व्हेन हैप्पीनेस अराइव्स योर सीट समहाउ डिसअपीयर्स। बट बिफोर वी डिसाइड व्हाट दैट मीन्स अबाउट दिस फ्रेंडशिप, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक एट अनदर पॉसिबिलिटी टू, बिकॉज पीपल डोंट नेसेसरली शेयर पेन एंड हैप्पीनेस विद द सेम पीपल और इन द सेम वे। So my dear listener, I am not going to answer this yet. Ek chhota sa musical break lete hain. I will come back and then I will let you know my perspective. Mere idhar se kaisa dikh raha hai aur kya dikh raha hai. Are you simply her safe space? Is that actually a bad thing? And most importantly, when does being someone's person for problems stop feeling like closeness and start feeling one-sided? Stay with me. This is Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSC Auditorium, Tessensohn Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: अच्छा, जब भी कोई गैजेट बिगड़ जाता है तो हम सबसे पहला सल्यूशन क्या करते हैं? उसको ऑफ करते हैं थोड़ी देर के लिए और ऑन कर लेते हैं, या फिर रीबूट करते हैं फिर थोड़ी देर बाद ऑन कर लेते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि रिश्तों में भी ऐसा चलता है, थोड़ा सा ऑन ऑफ सिचुएशन। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड थोड़ी देर पहले मेरे हाथों में एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे पार्टनर के अंदर सब कुछ अच्छा है, लेकिन चांद में दाग की तरह एक छोटी सी कमी है कि वो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, और जब वो नाराज होता है तो मैं और ज्यादा नाराज हो जाती हूँ, फिर सिचुएशन खराब हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में एक छोटा सा पॉज ढूंढना है। यू नो व्हाट, मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। इसलिए नाराज नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बात का बुरा लगता है, उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, फिर तीसरी बात उनके मन में आ रही होती है और सब कुछ पजल हो जाता है। तो ऐसे लोग जो छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाते हैं ना, उन्हें उस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, उनको थोड़ी सी स्पेस दे दो, और थोड़ी देर बाद ही एक जेन्युइन केयर दिखाते हुए कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी कुछ तो बनाकर दे दो, और उस तरीके से, उस बहाने से बात करना शुरू कर दो। आई बेट यू ऐसे लोग ना देखते ही देखते पिघल जाते हैं बॉस, और आपको लगेगा कि वाओ, आरजी नुपुर का जवाब तो यही होगा इस सिचुएशन पे। पर हाँ, और भी बहुत सारे सवाल डियर मस्ती दिल से शो पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ी सी देर में साथ में पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे उनके जवाब। मीनवाइल मैं आरजे नुपुर आपके लिए लगा रही है ये

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
4: It's a Masti Partner event.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑन डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं आपकी आंत्रा यहाँ पर वापस से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और यूजुअली इस शो में आप मुझे अपनी सिचुएशंस भेजते हैं और मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करती हूँ हम सभी यहाँ पर। आज थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं। आज सिचुएशन मेरी है बट मुझे इसमें आपका पर्सपेक्टिव चाहिए। सो हैव आई गो। So we were a group of four girlfriends, okay? हम सब क्लोज थे बट ऑब्वियसली ग्रुप्स में भी किसी से थोड़ा ज्यादा क्लोजनेस होती है थोड़ी सी किसी से कम क्लोजनेस होती है। एट सम पॉइंट टू ऑफ देम हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन एंड इवेंचुअली देयर वाज अ बिग रिफ्ट बिटवीन देम। सो नोबडी आस्क्ड मी टू चूज साइड्स कि नहीं तू मेरी तरफ या मेरी तरफ, राइट? बट समटाइम लेटर आई वॉज हैविंग पीपल ओवर एट माई हाउस। सो डिफरेंट सर्कल्स थे तो मैंने तीन डिफरेंट बैचेस में लोगों को इनवाइट किया एंड बिकॉज दीज टू वर नॉट गेटिंग अलोंग आई इनवाइटेड देम सेपरेटली। मुझे लगा आई वॉज एक्चुअली अवॉइडिंग एक ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो जाए बट वन ऑफ देम वॉज डीपली हर्ट एंड शी क्लियरली टोल्ड मी आई वैल्यू लॉयल्टी मोर देन एनीथिंग। आई थॉट यू वर ऑन माई साइड एंड ऑनेस्टली आई वॉज शॉक्ड। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट था लॉयल्टी side? I mean, I have to prove all of this? Are we still in school? And somewhere I also felt, dost hai tu meri, right? Don't you already know what you mean to me? But that one incident changed something between us. We never really had a proper closure. Aaj bhi kabhi kabhi formal messages jo hai exchange hote hain, birthdays and occasions and but we are not friends the way we used to be. And I'll admit it, I miss her, okay? I miss talking to her, I miss her presence. Recently, mujhe suddenly laga, why don't I just go and meet her one day? Hai na? No big discussion plan, ya, you know, no, aisa kuch nahi bolna hai mujhe ki we need to talk karke. Bas jaun, milu, and maybe somehow refresh, reset, and start again. But I wonder, should I? या जो रिलेशनशिप नेचुरली दूर चला गया उसे वही रहने देना चाहिए। सो टुडे माय डियर लिसनर्स आई रियली नीड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। अगर आप मेरी जगह होते वुड यू गो, वुड यू रीच आउट एंड गिव एन ओल्ड फ्रेंडशिप वन मोर चांस, या कहेंगे कि यार अंतरा रहने दे यार, सम फ्रेंडशिप्स आर बेटर लेफ्ट वेयर दे एंडेड। टेल मी व्हाट यू वुड डू। 9151896 आज मैं आंसर नहीं दे रही है, आप जो बोलोगे ना मैं आप सच्ची में सीरियसली कंसिडर करूंगी। ये है डियर मस्ती दिल से और रेडियो मस्ती 24/7।

0: लिसन, मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: नो
0: यार, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: आई डोंट नो।
0: देख, अकेली लड़की, अनजान शहर, कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ऐसा होता है ना कि हम चीटी बराबर प्रॉब्लम को ना हाथी बराबर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, डोंट यू थिंक सो? डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे पर आपके साथ, एंड थोड़ी देर पहले मेरे हाथों में जो लेटर आया, मुझे लग रहा है कि इसका भी कुछ ऐसे ही हिसाब है, चीटी बराबर दिक्कत है और इसे पहाड़ बराबर ना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सो जिनका लेटर मुझे आया था उन्होंने लिखा है कि हाय, मेरी पार्टनर जब भी ऑफिस से आती है ना तो मैं उसका फोन रेगुलर चेक करता हूँ, हर तरह से चेक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी उसके मोबाइल फोन पे कुछ और मिला हो, बट हाँ मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि मैं सेफ साइड चलना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है मैं उनको बता दूं, आप सेफ साइड तो चल रहे हैं लेकिन डोंट यू थिंक सो कि आप किसी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले हैं? हाँ अच्छा, कोई आपसे एकदम लॉयल है और आप लगातार उस पर शक कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि उसे पता भी नहीं चल रहा है, पर आप क्या खुद से खुद की नजरें मिला पा रहे हैं? चलो ठीक है, ये सारी बातें भी किनारे रख देते हैं। जिस दिन उन्होंने आपके संग ये ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया कि वो हर रोज आपका सेलफोन चेक करे, तो आपको कैसा लगेगा? बस वो फील आप एक बार फील कर लो ना, उसके बाद शायद आप जबरदस्ती ये चीजें ना करो, ठीक है?
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे।
1: बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर ऐसे ही बड़ी सारी बातें और बड़े सारे सवाल और जवाब कर रहे हैं अनोनिमस तरह से आपका इंतजार। डियर मस्ती दिल से शो।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
3: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
4: It's a must-be partner event.

And with that, we come to an end of another beautiful episode of Dear Masti Dil Se. मैं हूँ अंतरा and आज की conversations काफी अलग-अलग थी, but somewhere they all came back to expectations. नहीं किसी friendship में expectation कि मैं तुम्हारे difficulties में हूँ, क्या तुम्हारी happiness में मेरी जगह है, कहीं friendship और loyalty के बीच सवाल आया, कहीं किसी की generosity धीरे-धीरे दूसरों की expectation बन गई, workplace, marriage, maybe life में बहुत सारी चीजें जो हैं हमें hurt करती हैं, and कहीं पर I think they come from a little gap between मैंने सोचा था and actually हुआ ये. मैंने सोचा था she would tell me, मैंने सोचा था my friend would understand, मैंने सोचा था people wouldn't take my generosity for granted, मैंने सोचा था my colleague would give me credit, and perhaps वो gap hurt करता है when we have three choices: assume, stay silent or communicate. हर बात confrontation नहीं मांगती है, बट हर बात अंदर रखना भी मैच्योरिटी नहीं होती है. समटाइम्स एक सिंपल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कैन सेव अस फ्रॉम 10 क्रिएटिंग 10 डिफरेंट स्टोरीज हमारे खुद के दिमाग में. और आज रोल रिवर्सल में मैंने भी आपसे अपनी फ्रेंडशिप की एक अनफिनिश्ड स्टोरी जो है वो शेयर की. सो थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल हु रोट टू मी एंड गेव देयर पर्सपेक्टिव. आई हैव टेकन इट वेरी वेरी सिंसियरली एंड लेट्स सी, आई विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड ऑन अल्टीमेटली what I did and where that situation currently उस time पे होगी. So well, हाँ जी, कभी आप पूछते हैं मैं आंसर करती हूँ, और कभी मैं पूछती हूँ हम पूछते हैं. हमारे संघर्ष साथी जो हैं श्रीधर, वो आते हैं, वो केसेस लाते हैं, अलग अलग पर्स्पेक्टिव एक ही सिचुएशन पे मिलते हैं, and it helps. So keep writing to us, WhatsApp पर 9158963 पर. फिलहाल मैं अंतरा on behalf of Nupur and Sanghash Pasathi Shridhar signing off from Dear Masti Dil Se. और जाते जाते बस इतना, relationships में mind reading से ज्यादा useful एक चीज है talking. Good night.

ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: रेखा, राय साहब भूपेंद्र सिंह से बड़ा बदमाश, खतरनाक और जालिम गुनाहगार शायद ही कोई हो। वो पैसे के लिए देश को बेचता है, अय्याशी के लिए खून करता है। वो तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो।

रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ,

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: डांस बसंती
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: All right, वखरा स्वैग वो तो हमारा है ही है ना भाई अंतरा है ना ना अंतरा है ना बताओ ना अंतरा बोलो ना अंतरा
1: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: भाई आज रेणुका ने फॉलो चेंज ये नहीं कहा कि ये सुबह सुबह आते ही ये वो वखरा स्वैग क्या चल रहा है आज ये अलग ही मूड में है किधर वाह वाह फुल स्वैग के साथ भाई फ्राइडे को स्वैग के साथ नई एंट्री मारेंगे कब मारेंगे
0: स्वाग से करेंगे सबका स्वागत भाई क्या है कि पता नहीं हमेशा बोलते ना कि कुत्ते पीछे पड़े हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे चूज ही कर लिया है उनको लगता है कि बस यही है जिसके पीछे हम जब भी पड़ सकते हैं और ये हमेशा यू नो हमसे आगे भागती रहेगी तो मुझे लगता है कभी कभी जिंदगी एक अलग ही ढंग से लिखी जाती है और मेरी डेफिनेटली बहुत ही फुर्सत में लिखी गई है तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में अंतरा कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप
2: I can only say I can feel the pain because I am also running side by side. और हम यही कह रहे हैं बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती मत नाचना
0: बिल्कुल लेकिन वो कुत्ते सामने आके नाचने लग जाते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली नाचना पड़ता है रेडियो मस्ती 24/7 वेलकम वेलकम जी हाँ बिल्कुल आप मस्ती मैडनेस पर आ चुके हैं जहां पर ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल छूट गए हैं और हमें कुछ भी बोलना अलाउड है इसीलिए तो आप इस तरह की वार्तालाप सुबह सुबह सुन रहे हैं क्यों भाई कुत्तों से मोरनी तक का सिलसिला इसी टाइम हम पार करेंगे वेलकम वंस अगेन मस्ती मैडनेस
1: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: आइए आइए, स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर. अंतारा एंड रेनुका ऑन मस्ती मैडनेस.
0: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फन.
2: यो यो, एकदम सुबह सुबह एकदम तड़के तड़के पहुंच गए हैं. और आज मैं ये कहकर शुरू करूंगी कि क्या खबर लाई हो छमिया.
1: कितनी एम्पावर्ड फील कर रही है आज ये शो पर. कितनी एम्पावर्ड कि ये मेरे से ये सवाल पूछेगी. कोई नहीं, हम तो हमेशा के लिए तैयार ही रहते हैं. पता है, अजीब अजीब बात कुछ ऐसी है कि कई बार हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप्स में ऐसी ऐसी न्यूज ना, दे आर हैरान, गेटिंग वेरी हैरान कि ये हुआ वो हुआ. और मैं कहती हूँ, अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमको पहले से पता होती है. खैर, आज अंसरा मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ कि इस टाइम पर जितने पेरेंट्स होते हैं विद यंग चिल्ड्रन, वो सुबह के 7-7:30 के बीच में क्या कर रहे होते हैं, ये बताओ. क्या कर रहे होते हैं वो?
2: भेज रहे होते हैं, केओस मचा हुआ रहता है सबको. हाँ. मतलब बाहर भेजो, जल्दी भेजो, मेक श्योर कि वो चले जाए.
1: एग्जैक्टली. बच्चों घर से धक्का मार रहे होते हैं, राइट, मोस्टली. सो उसी के बारे में एक हुई बहुत अच्छी बढ़िया सी रिसर्च, और उस रिसर्च में इतने कमाल की बात हुई कि मेरा मन कर रहा है मैं 10-15 बच्चे और कर लूं अपने घर में. और कहने की बात यह है कि वीकडे मॉर्निंग्स for parents are intense endurance sport, burning up to 3000 calories, which is equivalent to a marathon, क्योंकि वो बच्चों के routine manage करते हैं. activities like बच्चे को bed से निकालना, उठ जा, वो वाला रोना है ना, then of course उसके जूते ढूंढना, उसके साथ breakfast negotiate करना, उन सब में parents की कम से कम 3,000 to 4,000 calories morning rush में burn होती हैं. How is that? तेरा मन कर रहा है कि नहीं कि बच्चे भाड़े पे ले आओ? That's the easiest one to do,
2: wow,
1: right?
2: Wow. But is it easy? मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि ये ज़्यादा chaos यहाँ पर ज़्यादा है, rather than like what we do right now to burn those calories.
1: भाई देखो, ऐसा है कि जिम में जाकर जब वो स्क्वाट्स करने पड़ते हैं ना, और जब वो सब करना पड़ता, तो मुझे लगता है एक बच्चे को बेड से उठाना इज ईजियर. दो चपेटे लगाई जिस टाइम थोड़ा सा, एटलीस्ट वो भारी भारी वेट उठा के तो नहीं करना पड़ेगा. हाय,
2: ओह माय गॉड, दर्द सुनो, दर्द आ रहा है.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: कहाँ जा रही है ये ब्रांडों की दुनिया, कहाँ ही जा रही है, कोई मुझे बता दो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ.
0: Setting the perfect hot temperature for Friday. Musty man.
2: How crazy are you for brands, Antara? How crazy are you? Tell me.
1: After looking at all of these things, I don't think so. मतलब कि मुझे और क्रेजी होने की जरूरत है इसके पीछे, क्योंकि ये तो मैं मतलब आई थिंक हम सभी कब से करते हुए आ रहे हैं. अ लॉट ऑफ यू नो इसकी जो रॉयल्टी है वो हमारी माओ को भी, मतलब रॉयल्टी माओ को क्या, हमें भी दी जा सकती है भाई. एक बहुत ही बड़ा ब्रांड, ओके. नाउ अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया फॉर्मल शर्ट इंट्रोड्यूस किया है. अब सोचो कि कैसा फॉर्मल शर्ट होगा ये, क्या किया इन्होंने. द शर्ट्स नेम इज मेन स्प्रेड कॉलर पेन इंक लीक पॉकेट कॉटन फॉर्मल शर्ट.
2: क्या कहना चाहते हैं?
1: बंदों की कॉटन शर्ट में यहाँ पे पॉकेट होती है ना, वो पॉकेट के ठीक नीचे जैसे आपका अगर पेन लीक कर जाए तो ब्लू कलर की इंक फैल जाती है ना, तो वो वैसा फैला हुआ इंक एज अ डिजाइन वहां पे डाला हुआ है. सो इट्स दी पेन इंक लीक पॉकेट कॉटन फॉर्मल शर्ट. बट दैट्स नॉट द थिंग. सोचो इसका प्राइस क्या है.
2: प्राइस क्या है बता दो तुम, आज बता ही दो मुझे, बताओ.
1: इसका प्राइस है 42,375 रुपीज ओनली.
2: पेन फैली हुई शर्ट है
1: जी, जी, जी, जी.
2: कुछ भी कह के बेचेंगे क्या, कुछ भी. और लेने वाले भी बहुत होंगे.
1: लोगों ने कहा है अपनी शर्ट फेंक कर 42,000 का नुकसान कर लिया हमने.
2: बात तो सही है, आज बेच सकते थे. मैंने कहा ना बिजनेस सेंस बहुत जरूरी है, हर चीज का पैसा कैसे बनाना है ये सिर्फ कुछ ही लोगों को आता है ये वाला आर्ट. वेल वेल, गुड मॉर्निंग.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
3: Healthy cow protein cow. Healthy cow protein cow.
4: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
3: Healthy cow protein cow. Healthy cow protein cow.
4: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
5: Gigi.
4: Crushable nuts only on GigiMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस.
5: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर.

0: और इन गानों के साथ साथ आप सुन रहे हैं ऐसी ऐसी बातें जो शायद आपको किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगी, वी प्रॉमिस यू दैट। लेकिन अगर आपको पढ़नी है ये वाली खबरें तो आप हमें जरूर लिख सकते हैं 9151896 पर, और हम आपको पूरी डिटेल्ड खबरें पहुंचा देंगे, जैसे कि ये अगली वाली।
1: Dainik Friday mornings, the funkiest and the funniest ever.
2: बस उसके बाद और क्या होगा। मैं तो आई थिंक बहुत पॉपुलर हो गई हूँ कि मुझे इस तरह की बहुत अतरंगी खबरें पता हुई होती है। मैं जब भी जाती हूँ कोई एक ऐसा टशन मारने के लिए बोलती हूँ, एंड देन आई एम लाइक व्हाट, हाउ डू यू नो दीज थिंग, लाइक ट्यून इन टू मस्ती मैडनेस। या दैट्स वेयर यू गेट टू गो।
0: जी बिल्कुल, मस्ती मैडनेस में इस समय हम बता रहे हैं कि चेन्नई की मैडनेस का एक बड़ा ही सॉलिड इलाज निकाला है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने। उन्होंने कहा है ऑफिशियली कि अगर कोई भी कम्यूटर प्ले करता है ऑडियो म्यूजिक वीडियो विदाउट ईयरफोन्स इनसाइड द ट्रेन्स एंड स्टेशंस तो उसको फाइन लग सकता है 2,500 रुपए तक का। एंड दिस रिवाइज्ड पेनल्टी जो है, पहले तो 500 की होती थी, अब 2,500 कर दिया सीधा, बिकॉज लोग सुधरते ही नहीं, उनको लगता है कि 500 में क्या, पहली बार तो कोई पकड़ेगा कैसे, उसके बाद हम भाग जाएंगे, अगर पकड़े भी गए तो 500 तो दे के छूट ही जाएंगे। लेकिन कोई भी ईयरफोन्स लगाने को तैयार नहीं है।
2: ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, ये घर वालों पे फाइन लगा सकते हैं क्या?
0: मेरे मुंह की
2: मेरे घर पे ये वाली प्रॉब्लम बहुत है।
0: मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने, स्पेशली रात को बेड पे लेट के जब एक इंसान कान में लगाता है ईयरफोन्स और दूसरा इंसान जोर जोर से भैमे भय करके चलाता है, जो कि लड़ाइयों का एक बहुत बेसिक रीजन हो जाता है घरों में। हमारी एक लिसनर ने भी हाल ही में हमें ये बात बताई थी कि भाई क्या करें इस चीज का। तो हाँ बिल्कुल फाइन लगा सकते हैं, आप एक चेक इशू कर सकते हैं टू मस्ती मीडिया नेटवर्क और कह सकते हैं कि ये बिल्कुल लीगली एकदम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तेरा बस मुझे जीने न दे, जीने न दे।
2: सो ट्रू, सो ट्रू।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: All right, और यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सुन रहे हैं मस्ती मैडनेस। मस्ती मैडनेस में कहाँ कहाँ की खबरें आ रही हैं, चलो देखते हैं अंतरा क्या लेकर आई है हमारे लिए इस टाइम पर।
3: दैनिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द
4: रेणुका, आपको अपने एग्जामिनेशन टाइम याद है क्या? मतलब कैसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा नहीं कुछ मतलब गलती से ज्योमेट्री बॉक्स नीचे नहीं गिराना है, और अगर गिर भी जाता था तो पूरी क्लास गूंजती थी उससे कि ओ किसने किया
2: ऐसा, और शक्की निगाहों से टीचरें देखती थी, शक्की निगाहों से, बिल्कुल है ना, इनविजिलेटर कैसे देखते थे हमको, ओ माई गॉड।
4: कट टू दिस एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन रूम का हॉल हो रहा है फिलहाल वायरल। सो ये एग्जाम है बीएड साइकोलॉजी का, ठीक है, कर्नाटका का ये सिनेरियो है। सारे जितने भी बच्चे हैं वो बैठकर अपना एग्जाम दे रहे हैं सीट्स पे जैसे कि करते हैं, लेकिन अब जो टीचर्स हैं, और आई थिंक इन्होंने आजू बाजू से भी लोग बिल्कुल उधार पे लेकर आए होंगे, नाउ ऑल ऑफ दीस पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ साउंड एंड नॉइज। मतलब कोई हा करके चिल्ला रहा है, कोई जानवरों की आवाज निकाल रहा है, कोई लाठी लेकर जो है इधर उधर मार रहा है, कोई खिड़कियां बैंग कर रहा है, कोई उनके सर के ऊपर उनके आंखों के सामने ऐसे हा हा ही हाथ चलाते हुए, मतलब बेसिकली इट्स एन अनयूजुअल एक्सरसाइज। इसको डिजाइन किया गया टू टेस्ट इन बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन के लेवल एंड एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड अंडर चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मैं कहती हूँ मुझसे तो शांति में पेपर नहीं निकल गया, इसमें तो पता नहीं मेरा क्या ही होता।
2: सही बात है यार, ये तो मतलब डिस्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं, ये चाहते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्शन में किस तरह से फोकस कर सकते हैं, इज दैट द एग्जाम?
4: करेक्ट,
2: करेक्ट, देयर इज सो डीप। मैं कहती हूँ और भी तरीके हैं डिस्ट्रैक्ट करने के, जैसे कि ये है ना, अगर बच्चों के सामने इस तरह का कोई डांस किया जाए, हुस्न है सुहाना इश्क है दीवाना, तब देखते हैं डिस्ट्रैक्शन लेवल हाई रहता है कि नहीं।
4: इस गाने को थोड़ा सा और दो टोन नीचे करके थोड़ा हस्की वॉइस में कर दो तो और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा।
2: बच्चों को पढ़ने मत देना, तुम है गंदे गंदे आइडियाज लेकर आओ तुम।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: Gigi.
0: Krishival nuts only on GigiMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
3: आमिर खान वंडर्ड।
4: वाओ, लुक, आई कुड हैव थॉट ऑफ एनीथिंग, दैट्स अमेजिंग।
3: सलमान खान वांटेड आंसर्स।
5: कैसे किया ये?
3: आर माधवन सेड।
6: ऑसम, यू आर वेरी गुड यार, वेरी वेल डन।
3: एंड बमन ईरानी।
7: आई से दिस विद ग्रेट रिस्पेक्ट, दिस इज एक्चुअली इट्स ब्लोन माय माइंड।
3: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
8: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
3: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
9: How do you know these things? Stop reading my mind!